मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलो हर्ट्ज़ और 102.9 मेगा हर्ट्ज़ एवं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय 5:58 हो रहे हैं। हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज
3: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए विचार मंथन। विचार मंथन में आज आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विचार सुनेंगे, मंजिल को पाने की दिशा में आगे

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख डॉक्टर महमूद शेख का है और वाचन स्वर है शैलेंद्र जोगी का।
1: ईश्वर इंसान की भलाई चाहता है। जो लोग उसकी उपासना करते हैं और उसके बंदों से प्रेम करते हैं, वो उन्हें भी संसार के सब सुख देता है, और जो उस पर विश्वास नहीं करते उनकी जरूरतें भी पूरा करता है। जरा सोचिए, यदि हवा, पानी और रोशनी पर ईश्वर टैक्स लगा दे तो इस दुनिया का क्या हाल होगा। परंतु दुनिया को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी इंसान पर है, इसीलिए लोक कल्याण की भावना का महत्व सर्वोपरि है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की कुछ महत्वपूर्ण हदीस इस संदर्भ में लोगों के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकती है। आप फरमाते हैं, लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। तुम में से कोई ईमान वाला नहीं होगा जब तक कि वो अपने पड़ोसियों के लिए वो कुछ पसंद न करे जो वो अपने लिए पसंद करता है।

0: आपस में ईर्ष्या न करो और ना आपस में बैर भाव रखो और ना परस्पर एक दूसरे से संबंध विच्छेद करो। अल्लाह के बंदे और भाई भाई बनकर रहो। सेवा के बिना हमारा प्रेम और हमारी उदारता विश्वसनीय नहीं हो सकती। कुरान शरीफ में आया है, और एहसान कर जिस प्रकार अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किए हैं, और धरती में बिगाड़ पैदा न कर। निसंदेह अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता। दुनिया में जितनी विसंगतियां हैं वो इंसान ने पैदा की हैं। ईश्वर सबके साथ इंसाफ करता है। धरती अनाज पैदा करती है, नदी सबको पानी देती है, पेड़ों से लकड़ी और फल मिलते हैं। देखा जाए तो जीवन का कारोबार ईश्वर की दया पर निर्भर है। हमारे पास मशीन है, टेलीफोन, टेलीविजन, बाइक, मोटरसाइकिल के बिना भी जीवन यापन किया जा सकता है, परंतु यदि खाने की वस्तुएं ना हों तो जीवन समाप्त हो जाएगा। विशेषकर पानी के महत्व से कौन इनकार कर सकता है। मशीन इंसान का पोषण नहीं करती, बल्कि इंसान मशीन का पोषण करता है। कुरान ईश्वर की महानता को बार बार दोहराता है ताकि मनुष्य अपनी कमजोरियों से वाकिफ हो सके और कोई ऐसा कार्य न करे जिससे जन साधारण को कष्ट पहुंचता हो। परंतु आज इंसान ईश्वर का दास नहीं बल्कि अपनी इंद्रियों का गुलाम हो गया है, इसलिए गरीब इंसानों का दुख उसे दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि कुरान इंसान से अच्छे व्यवहार की कामना करता है। अच्छा व्यवहार करो माता पिता के साथ, नातेदारों, अनाथों और मोहताजों के साथ, निकट के पड़ोसियों के साथ, और साथ रहने वाले साथी के साथ, और मुसाफिर के साथ, और उनके साथ भी जो तुम्हारे अधीन हो। अल्लाह ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहता जो घमंडी और डींगे मारता हो। हजरत मोहम्मद साहब फरमाते हैं, सारे लोग खुदा का कुटुंब हैं, अतः लोगों में खुदा के निकट सबसे उत्तम वो व्यक्ति है जो उसके कुटुंब के साथ अच्छा व्यवहार करे। अच्छे इंसान वही हैं जो उपद्रव और बिगाड़ से घृणा करते हैं और चाहते हैं कि संसार में शांति की स्थापना हो, तो इसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि इंसान आपस में मिलजुल कर रहें। खुदा अपने बंदों के दुख और तकलीफ को अपना दुख और तकलीफ मानता है, लेकिन इंसान इंसान का दुश्मन बन जाता है। काश इंसान अपने अंदर वो गुण पैदा करता जो खुदा को पसंद है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशलक्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाती हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों

तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस गान सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि सामिकी। इसमें आज का विषय है सफेद मूसली की व्यावसायिक खेती।
1: सफेद मूसली किसान बहनों भाइयों, ये एक प्रमुख औषधीय पौधा है जिसे हमारे यहाँ सफेद सोना कहा गया है। अधिकांश क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से उगता है और हमारे क्षेत्र की जलवायु इसके लिए अच्छी मानी गई है। ये पौधा जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 500 से 1500 मिलीमीटर वर्षा में अच्छी तरह से बढ़ता है। इसके लिए अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी दोनों ही उपयुक्त होती है, जो कि कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होना चाहिए। इसके लिए जो भूमि होनी चाहिए उसका पीएच मान 6 से 8 के बीच में होना चाहिए। सफेद मूसली की खेती में अच्छे जड़ विकास के लिए भूमि की अच्छी तैयारी बहुत जरूरी है। जो अच्छे वर्षा वाले क्षेत्र हैं, इसमें 10 से 15 सेंटीमीटर पर रोपण की सलाह हम देते हैं ताकि अतिरिक्त पानी का निकास तेजी से हो सके। सफेद मूसली का प्रवर्धन बीजों द्वारा और जड़ों द्वारा, जिनमें डिस्क का कुछ भाग होता है जहां पर कलियां स्थित होती हैं, ये दोनों के द्वारा किया जा सकता है। सूक्ष्म प्रवर्धन भी सफेद मूसली में सफल और एक समान रूप से पौधों के उत्पादन के लिए सहायक माना गया है। कम अंकुरण दर और विषम युग

0: जी, प्रकृति के कारण सफेद मूसली की व्यावसायिक खेती के लिए वानस्पतिक प्रवर्धन अच्छा माना गया है। अलैंगिक प्रवर्धन पिछली फसल से संग्रहित गुच्छेदार जड़ों द्वारा किया जाता है। अगले वर्ष की रोपण सामग्री की आवश्यकता के अनुसार अप्रैल के लगभग जड़ों की खुदाई के बाद पूरी या आंशिक जड़ों को संग्रहित किया जाता है। रोपण सामग्री के लिए जड़ों को 2 से 5 किलोग्राम क्षमता वाले कंटेनर या बक्से में समान अनुपात में रेत या चूरे से ढककर ठंडे और नम स्थान पर रखा जाता है। और अब जो समय आया है, यानी कि जून का जो माह चल रहा है, इसमें जड़ों के अंकुरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। रोपण के पहले अंकुरित सामग्री को भंडारित कंटेनर से निकालकर कमरे के तापमान पर कुछ दिनों के लिए बाहर रखा जाता है ताकि डिस्क पर कलियां उग सकें। इसके बाद उंगली के आकार की कलियों और डिस्क के कुछ हिस्सों को एक तेज ब्लेड या चाकू की मदद से अलग कर दिया जाता है। डिस्क का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक डिस्क या अंकुर में 1 से 3 गुच्छेदार जड़ें हों और प्रत्येक अंकुर का वजन कम से कम 5 ग्राम होना चाहिए। सफेद मूसली की अधिक उपज यदि आपको प्राप्त करना है तो सही तरीके से इसका रोपण जरूरी होता है। यह आमतौर पर मिट्टी की बनावट पर निर्भर करता है और कितनी वर्षा आपके क्षेत्र में होती है उस पर भी निर्भर करता है। यदि वर्षा अधिक है तो ऊंची क्यारियां बनाएं, जिसे कि रेज्ड बेड भी कहते हैं। यदि आपके खेत में जल निकास की अच्छी व्यवस्था है तो मेड़ों पर या समतल बेड पर भी इसका रोपण किया जा सकता है। यदि मिट्टी भारी है और जल निकासी खराब है तो फसल को ऊंचे बेड या मेड़ों पर उगाना चाहिए। रोपण मानसून के आगमन की पहली या दूसरी बारिश में अभी किया जा सकता है, क्योंकि इससे जड़ी बूटियों के जीवित रहने की दर बढ़ जाती है। मेड़ों या ऊंची क्यारियों में एकल या दोहरा रोपण आप कर सकते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए, जिससे कि 1 हेक्टेयर में लगभग 3,30,000 पौधे लग सकें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपण के लिए 600 से 1,000 किलोग्राम रोपण जड़ों की आवश्यकता होगी और रोपण सामग्री की मात्रा दूरी के अनुसार आप बदल भी सकते हैं। सफेद मूसली की व्यावसायिक खेती के लिए ड्रिप सिंचाई को सबसे अच्छा माना गया है। यद्यपि इसकी खेती बरसात के मौसम में हम कर रहे हैं, परंतु जब पानी कम हो या बरसात ना हो तो ऐसी स्थिति में पत्तियों के गिरने की अवस्था के बाद इसे पानी की नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए आपके क्षेत्र में वर्षा किस तरह से हो रही है उसके अनुसार भूमि की नमी देखकर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर कम से कम 6 से 8 सिंचाई अवश्य करें। अच्छे परिणाम के लिए भूमि की तैयारी के समय 10 से 15 टन अच्छी पकी हुई गोबर की खाद डाली जा सकती है। हाथ से निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है ताकि पौधों का विकास अच्छी तरह से हो सके। पुष्पक्रम दिखाई देने पर नियमित रूप से निपिंग करनी चाहिए, क्योंकि पुष्पक्रम निपिंग से जड़ों की उपज में 35% तक की बढ़ोतरी पाई गई है। पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए प्रति हेक्टेयर 50:40:40 किलोग्राम नत्रजन, स्फुर और पोटाश ये अच्छा माना गया है। फसल की वृद्धि के दौरान 2 से 3 बार हाथ से निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है और बरसात के मौसम में जो इसकी मोटी जड़ें आती हैं, इनके संपर्क से बचने के लिए मिट्टी चढ़ाने का भी कार्य जरूरी होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामी की। इस कार्यक्रम में आज का विषय था सफेद मूसली की व्यावसायिक खेती। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 9:30 पर सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपके SMS आपके गीत। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रसधार सुनिए सवेरे 9 बजे और शाम 6:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। सवेरे 9:15 पर सुनिए गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम को हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

सवेरे 10:05 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। 10:10 पर सुनिए विश्व दर्पण। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सवेरे 10:20 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। शाम 7:20 पर किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम।

शाम 6 बजे सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:30 पर, 5:33 पर और रात्रि 8:15 पर।

आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक

0: पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27 to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. He will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on the Narco

0: करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, नशे के दुष्परिणामों से बचाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करें। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार, पहले की तरह बहाल हुई सेवाएं। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग में सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे

0: और वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को नई गति देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नशे के दुष्परिणामों से किशोरों और युवाओं को समय रहते परिचित कराना जरूरी है। नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और महाविद्यालयीन स्तरों के पाठ्यक्रमों में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता पर केंद्रित सामग्री शामिल की जाए। वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार आने के बाद केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पश्चिम एशिया संकट से पहले ही आपूर्ति बहाल कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार थोक एलपीजी की आपूर्ति को पहले से 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने का भरोसा भी जताया है। भारत ने जर्मनी में सुहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में कल 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीतकर 25 पदक अपने नाम कर लिए। उधर आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। वहीं भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। लोकतंत्र प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिन बताया। उन्होंने कल ग्वालियर में कहा कि आधी शताब्दी बीतने के बाद भी उन्हें अपने स्कूली जीवन की वे यादें ताजा रहती हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि देश ने आजादी के बाद जो अन्याय और यातनाएं झेली हैं, उसकी जानकारी आगामी पीढ़ी को होना जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि लोकतांत्रिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं।
1: लोकतंत्र की हत्या का दिन था वो। आधी शताब्दी बीत गई है पर मुझे लगता है कि जब आपातकाल लगा था तब मैं पढ़ता था स्कूल में। आज वो जनरेशन जरूर याद रखे कि मूल्य कैसे सुरक्षित होते हैं। लोगों ने आजादी के आंदोलन की बातें तो सुनी है, लेकिन उसके बाद देश की आजादी के बाद जो अन्याय इस देश पर हुआ, वो जिनने यातनाएं सही हैं, उनकी जानकारी भी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। और जिन लोगों ने लोकतंत्र बचाने के लिए यातनाएं सही हैं, उनका स्मरण भी होना चाहिए और उनको नमन भी होना चाहिए, और उसी कारण से पार्टी प्रतिवर्ष काम करती है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल संकल्प से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य में एक अभूतपूर्व जल क्रांति का सूत्रपात किया है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने अपने हालिया लेख में मुख्यमंत्री को जनप्रिय जननायक के रूप में रेखांकित करते हुए लिखी है। लेख के अनुसार मुख्यमंत्री पिछले 22 वर्षों के अपने भागीरथ संकल्प और अटूट निष्ठा के बल पर वे जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं और बावड़ियों का कायाकल्प कर रहे हैं। आस्था के केंद्र मां शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाना है उनका मुख्य उद्देश्य, ताकि आगामी सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालु शुद्ध जल से स्नान कर सकें। भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश से आए करीब 2000 मीसाबंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 3 वयोवृद्ध सेनानियों का विशेष सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अंतिम अंतरकुंजी यानी आंसर की को चुनौती देने वाली विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 28 तारीख तक www.neet.nta.in पर प्रति प्रश्न 200 रुपये का शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साथ ही पुनर्परीक्षा में शामिल छात्र शुल्क वापसी के लिए 30 तारीख तक बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा newsoneair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: इतना चार फुट पे चार चीज लगाओ, एक फसल मत लगाओ। अपन पिल गए धान तो धान ही धान, धान और गेहूं, धान और गेहूं, धान और गेहूं। उससे क्या हुआ कि पहले अपन दलहन बाकी चीज लगाते थे तो अपने आप नाइट्रोजन फिक्स हो जाता था धरती में, बदल बदल के लगाते थे ना, तो धान गेहूं का विरोधी नहीं हुई, लेकिन लगातार एक ही चक्र चलेगा तो धरती खराब होगी। एक करें अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग, का मतलब ये भी है कि फल भी लगाएं, सब्जी भी लगाएं, दाल भी लगाएं। अब गन्ना के बीच में है क्या, मूंगफली लगा रहे हैं, अब यहां पे शुरू हुआ। अच्छा इंटरक्रॉपिंग भी करें और वहीं पशुपालन भी हो, जिनकी रुचि है वो मछली पालन करें, जिनकी रुचि है उनसे कह रहा हूं मधुमक्खी पालन हो सकता है, कृषि वानिकी या एग्री बेस्ड फॉरेस्ट, एग्री बेस्ड एग्रीकल्चर हो सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल यहाँ बना है, उसको जरूर देखना आप। चार पांच चीज करो मेरे भाई, हमारे यहाँ कहते थे चार फूट।
1: प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल प्रदेश के कलेक्टर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुशासन के लिए सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और हर विद्यार्थी की अपार आईडी बनाने को कहा। बैठक में शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने, सभी जिलों में पशु आश्रय स्थल विकसित करने और पीएनजी कनेक्शन के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के बदरवास में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 8 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले में 159 आकांक्षी युवाओं का प्रारंभिक चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। खंडवा के शासकीय आईटीआई में 2 जुलाई को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेले के विभिन्न निजी कंपनियां करीब 200 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु के 5वीं से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा भाग ले सकेंगे। आगरमालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विकासखंड स्तरीय शिविरों में वयोश्री योजना के 99 वरिष्ठजनों और एडिप योजना के 63 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है। अशोकनगर में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधाओं में रुचि रखने वाले और आर्मी व पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कटनी जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शाला प्रारंभ उत्सव के दूसरे चरण में शासकीय स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 100 से अधिक अधिकारियों ने स्कूल में प्रेरक बनकर बच्चों का मार्गदर्शन दिया। झाबुआ कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में जनता की सुविधा के लिए भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक सीमाओं आदि पर चर्चा की गई। डिंडोरी जिले के महदवानी में जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत दंदना नदी तट पर स्वच्छता श्रमदान किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार। आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, जी सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर।

श्रोताओं, हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

नशे की लत व्यक्ति की कार्य क्षमता को कम कर देती है तथा उसके परिवार और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है।

0: पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: योग शरीर को तो स्वस्थ रखता ही है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप क्रमशः हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत

0: 3,000 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपए शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
2: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
3: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3,000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।

0: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है, पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्ते ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today.

अभी आप अनुराधा पौडवाल के स्वर में फिल्म दिल है कि मानता नहीं का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे फैज अनवर और संगीत था नदीम श्रवण का। लीजिए सुनिए फिल्म अब्दुल्ला का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। संगीत आर डी वर्मन का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

मेला फिल्म का गीत सुनिए, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वरों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत है आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म किस्मत से। गायक कलाकार हैं आशा भोसले। गीत के बोल लिखे हैं महबूब ने और संगीत है AR रहमान का।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद आप न्यूज हेडलाइन सुनेंगे, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: सबीरा, तो कार्यक्रम को कुछ समय के लिए यहाँ पर विराम देते हैं और सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वैश्विक संकट के बीच एलपीजी आपूर्ति में सुधार आने के बाद केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पहले की तरह आपूर्ति बहाल कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी यानी आंसर की को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश भर से आए करीब 2000 मीसाबंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं कि नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और महाविद्यालयीन स्तरों के पाठ्यक्रमों में नशे के विरुद्ध जागरूकता पर केंद्रित सामग्री शामिल की जाए। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रदेश के कलेक्टर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। वहीं हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम को 6 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लोक संगीत का कार्यक्रम सुनिए लोक रसधार। हमारे आज के कलाकार हैं देवी सिंह दाहिया। आइए उनके स्वर में सुनते हैं ये लोकगीत।
2: से

लोकगीत का कार्यक्रम लोक रसधार आप सुन रहे थे। हमारे आज के कलाकार थे देवी सिंह दाहिया। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे गांधी चर्चा, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा।
1: प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

असहयोग जनसाधारण में अपनी गरिमा और शक्ति की भावना जागृत करने का एक प्रयास है। ये तभी संभव है जब उन्हें ये ज्ञान कराया जाए कि यदि वे अपनी अंतरात्मा को पहचान सकें तो उन्हें पशु बल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। असहयोग बुराई में अनजाने और अनिच्छापूर्वक भागीदारी करने के विरुद्ध किया गया प्रतिवाद है। बुराई के साथ असहयोग करना उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य है जिस प्रकार अच्छाई के साथ सहयोग करना। असहयोग कोई निष्क्रिय स्थिति नहीं है, ये अत्यंत सक्रिय स्थिति है, हिंसक प्रतिरोध या हिंसा से अधिक सक्रिय। निष्क्रिय प्रतिरोध एक गलत संज्ञा है। असहयोग शब्द का प्रयोग मैंने जिस अर्थ में किया है उसमें इसका अहिंसक होना आवश्यक है और इसीलिए ये न तो दंडात्मक है और न द्वेष, दुर्भावना अथवा घृणा पर आधारित है। मैं साहसपूर्वक ये कहना चाहता हूं कि भगवद गीता अंधकार और प्रकाश की शक्तियों के बीच असहयोग का सिद्धांत है। यदि इसकी शाब्दिक व्याख्या की जाए तो सदउद्देश्य का प्रतिनिधित्व करने वाले अर्जुन को अन्यायी कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए आदेश दिया गया था। तुलसीदास ने संतों को परामर्श दिया है कि वे असंतों की संगति से बचें। सभी धर्मों में जिस प्रकार न्यायप्रिय व्यक्तियों तथा राजाओं के साथ सहयोग करना मनुष्य का कर्तव्य बताया गया है, उसी प्रकार अन्यायी व्यक्तियों और राजाओं के साथ असहयोग करने का कठोर आदेश दिया गया है। वस्तुतः विश्व के अधिकांश धर्म ग्रंथ असहयोग से भी आगे बढ़कर ये कहते हैं कि बुराई के सामने

नपुंसकों की तरह घुटने टेक देने से हथियार उठा लेना बेहतर है। हिंदू धार्मिक परंपरा में असहयोग के कर्तव्य को स्पष्ट रूप से सिद्ध किया गया है। प्रहलाद ने अपने पिता से, मीराबाई ने अपने पति से और विभीषण ने अपने

सकता हूं उसे हर कोई कर सकता है। सार रूप में यही अहिंसक असहयोग का सिद्धांत है। इसलिए इसका अर्थ यह है कि इसके मूल में प्रेम होना आवश्यक है। इसका उद्देश्य विरोधी को दंड देना या उसे क्षति पहुंचाना नहीं होना चाहिए। उसके साथ असहयोग करते हुए भी हमें उसे ये अनुभव करने देना चाहिए कि हम उसके मित्र हैं, और जहां भी संभव हो हमें उसकी मानवीय सेवा करके उसके हृदय को जीतने का प्रयास करना चाहिए। गांधी चर्चा में ये था आज का प्रसंग, और अब प्रस्तुत है भजन।

0: अभी आप सुन रहे थे
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है।

का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म नया दौर का गीत, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों के स्वर में। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी और संगीतकार ओपी नैयर।

सोनाली ठाकुर के स्वर में अभी आपने फिल्म लुटेरा का गीत सुना। संगीत था उषा खन्ना का और गीत लिखा था निदा फाजली ने। मोनाली ठाकुर के स्वर में अभी आपने लुटेरा फिल्म का गीत सुना। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और संगीत था अमित त्रिवेदी का। आइए आप सुनते हैं फिल्म कभी कभी का ये गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मुकेश के, गीतकार साहिल लुधियानवी और संगीतकार खयाम।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से ले करेंगे।
1: बाघेला बीता हुआ महीना सिंगरौली जिले से विकास कार्यों, प्रशासनिक सतर्कता, खेल जगत की उपलब्धियों और सामुदायिक कल्याण की दृष्टि से मिलाजुला रहा। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सिंगरौली प्रवास के दौरान जिले के लिए विकास का बड़ा पिटारा खोला गया। मुख्यमंत्री ने यहां कुल 552 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया, जो जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की 24 लाख महिलाओं के खातों में 3 महीनों की कुल 115 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत भी 33.71 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 202.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से भेजी गई। इस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय छात्राओं से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधा संवाद भी किया। जिले में खेल संस्कृति को नई दिशा देने के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर की स्थापना की जा रही है, जो युवाओं को बेहतर सुविधाएं देकर उनकी प्रतिभा को निखारने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही जिले की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाला सिंगरौली महोत्सव और नगर गौरव दिवस 23 मई से 25 मई तक आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जिले की प्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके और राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रहीं। आगामी मौसम को देखते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता और पुलिस अधीक्षक शियाज के एम की उपस्थिति में आपदा प्रबंधन कार्य योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए सभी एसडीएम को बाढ़ प्रभावित गांवों और संवेदनशील नदी नालों को चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कड़े लहजे में कहा कि यदि नदी नालों के बहाव क्षेत्र में कोई अतिक्रमण है तो सर्वे कर उसे तत्काल मुक्त कराया जाए। साथ ही बाण सागर बांध और सोन नदी में जल स्तर बढ़ने से प्रभावित होने वाले संभावित गांवों का निरंतर भौतिक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। खेल जगत की बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित 12वीं माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2026 में सिंगरौली के नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 10 मेडल जीतकर नया इतिहास रचा है। कलेक्टर ने इन प्रतिभावान खिलाड़ियों की सराहना करते हुए मुख्य कोच गणेश सिंह को एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए, जिसके तहत जिले के शासकीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावासों में बच्चों, विशेषकर बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए नियमित कराटे प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर द्वारा आम का पौधा रोपा गया। उन्होंने अधिकारियों को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल पौधा लगाना काफी नहीं है, बल्कि उसका एक बच्चे की तरह संरक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जिले के सभी शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाने की भी बात कही। दूसरी ओर दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने मुखबधिर दिव्यांगजनों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और कहा कि उनकी रुचि के अनुसार CSR मद के माध्यम से रोजगार के अवसर और RCT के माध्यम से ब्यूटी पार्लर व टेलरिंग जैसे प्रशिक्षण दिए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बंद पड़े दिव्यांग विद्यालय को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है, जहाँ BEd प्रशिक्षित स्थानीय शिक्षकों द्वारा बच्चों को संवेदनशील वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। सिंगरौली पुलिस की त्वरित कार्रवाई और साइबर सेल की सतर्कता से साइबर ठगी का

0: शिकार हुए शांतिनगर बैड़न निवासी राहुल कुमार सोनी को उनके खाते से धोखाधड़ी कर निकाले गए 51,000 रुपए वापस करा दिए गए हैं। पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया के तहत जिले के 198 नव आरक्षक मिले हैं, जिनमें से 28 नवनियुक्त आरक्षकों को एसपी शियाज के एम ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार एसपी द्वारा दो चौकी प्रभारियों समेत कुल 89 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है, जो पिछले 4 वर्षों से एक ही थाने या शाखा में पदस्थ थे। स्वास्थ्य क्षेत्र में एनटीपीसी विंध्य चिकित्सालय द्वारा सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 136 लाभार्थियों को विशेषज्ञों द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिया गया। अंत में नोनिहालों के विकास के लिए चल रहे आरोहण समर कैंप 2026 में बैडमिंटन, टेबल टेनिस और डांस गतिविधियों में लगभग 180 बच्चे उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं, जिन्हें अनुभवी कोच द्वारा मार्गदर्शन और पोषण युक्त स्नैक्स प्रदान किए जा रहे हैं। निष्कर्षता सिंगरौली जिला प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधि मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सुरक्षा और पर्यावरण के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सिंगरौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अब सुन रहे थे सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम वंदे मातरम गौरव गान की डेढ़ सदी।

वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत के सबसे प्रेरणादायक और सम्मानित राष्ट्रगीतों में से एक है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। ये गीत भारत माता की सुंदरता, समृद्धि और शक्ति का वर्णन करता है तथा देशभक्ति की भावना को जागृत करता है।

अभी आप सुन रहे थे वंदे मातरम गौरवगान की डेढ़ सदी। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे विश्व दर्पण कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए कल 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 6 साल बाद फिर से बहाल। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 235 हुई और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति, अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स की महारानी के साथ मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय स्वास्थ्य से संबंधी उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। उन्होंने भारत के जनधन कार्यक्रम के लाभार्थियों से भी बातचीत की, जो एक सरकारी पहल है और जिसके तहत परिवारों को किफायती दरों पर बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्ण कांत।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत और सेशल्स के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन संबंधों पर आधारित दूरगामी साझेदारी है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन भी प्रभावी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू हो रहा है। आज 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचा दिया। प्रशासन को 103 से अधिक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं और जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी व्यापार पास जारी किए जाएंगे। सामान ढुलाई के लिए नाभी ढांग के पास खच्चरों और घोड़ों की व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में पुनः शुरू हुआ था, लेकिन कोविड महामारी के कारण 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया था। 6 वर्ष बाद व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला में कल आए भूकंप के 2 शक्तिशाली झटकों से मृतकों की संख्या अब 235 हो गई है। 1500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बचाव कर्मी मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: भूकंप के बाद वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव के लिए कई देश आगे आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए अमीशा।
0: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को निकालने के प्रयास रोक दिए हैं। ओमान तट पर कल एक जहाज पर हुए हमले के बाद ये निर्णय लिया गया। इसके पहले ईरान की अनुमति के बिना जहाजों को नए मार्ग का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई थी। अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: सबसे पहले बात फुटबॉल विश्व कप की। फीफा विश्व कप में अमेरिका के न्यूजर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए अगले दौर में जगह बना ली है। गोंजालो प्लाटा के शानदार खेल की बदौलत इक्वाडोर ने वापसी करते हुए ये मैच जीत लिया। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई। इस जीत के साथ आइवरी कोस्ट के 6 अंक हो गए हैं। एक अन्य मैच में जापान और स्वीडन का मैच ड्रॉ रहा, दोनों ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही जापान और स्वीडन नॉकआउट राउंड में जगह बनाने में सफल रहे। उधर नीदरलैंड ने ट्यूनिशिया को हराकर ग्रुप एफ में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराया और पहली बार नॉकआउट में जगह बनाई। अब बात निशानेबाजी की। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही भारत प्रतियोगिता में कुल 25 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर है। बात महिला T20 विश्व कप की। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। कल इंग्लैंड के मैनचेस्टर में बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। और उधर T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के

0: परिवर्तन पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। भारत चीन सीमा व्यापार उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होकर 6 साल बाद फिर से बहाल और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म उपकार से। आवाज है महेंद्र कपूर के, गीतकार गुलशन कुमार मेहता, संगीत कल्याण जी आनंद जी। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सर्वानिया महाराज जिला नीमच मध्य प्रदेश से, गोविंद पाटीदार, ममता पाटीदार, पूजा पाटीदार, मधुसूदन पाटीदार, यशस्वी पाटीदार और हंसवी पाटीदार।

अगला पत्र आया है हमारे पास गौरी नगर इंदौर से। आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले, ये सुनना चाहते हैं फिल्म संजू का गीत। गायक हैं सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल, संगीतकार हैं विक्रम मोन्ट्रोस। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

अगला खाता हमारे पास है लुधियाना पंजाब से। अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर इस गाने को सुनना चाहती हैं। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फ़कीर, डब्लूउल्ला फ़कीर, परवीन आसमा फ़कीर। बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। गीत है फिल्म हीरो का। आवाज़ें हैं अनुराधा पौड़वाल और मानवरू दास की। गीतकार आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अगला गीत है फिल्म खुदा गवाह से। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्य, रानी वैद्य, महिमा वैद्य और नीतू वैद्य। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।
1: सर जमीन हिंदुस्तान,

ये इस गीत की फरमाइश भेजी थी हमें गोविंद जी ने, ममता, पूजा और मधुसूदन जी ने, गड़ा बाजार जबलपुर से। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। अब से कुछ ही पलों बाद आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत कर रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे की लत से बचाना, पुनर्वास में मदद करना और नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आज भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश भर से आए करीब 2000 मीसाबंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषक कल्याण वर्ष में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। 13 जिलों में जिन सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके लोकार्पण की तैयारियां कर ली गई हैं। इससे आगामी 6 माह में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होगी। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं, साथ ही मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। और ICC महिला 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने।
2: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर हाजिर हैं हम एक बार फिर। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम है आपकी फरमाइशों का और आप हमें फोन करके अपनी फरमाइशी गीत सुन सकते हैं। फोन नंबर है 0755-266-0902। इसमें 0755 हमारा STD कोड है, तो आपके फोन कॉल्स का हमें इंतजार है। साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से 11 बजे तक। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
3: नमस्ते मैडम
2: जी, आपका नाम जान सकती हूँ?
3: मैं अनिला जी मंसूरी बोल रही हूँ, पालदाना का इंदौर से। मैडम कैसे आप?
2: मैं बढ़िया हूँ, कैसी हैं आप?
3: अच्छी हूँ मैडम, आप कैसे हैं?
2: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है?
3: बस पड़े पड़े फोन लगा रही थी मैडम आपको।
2: अरे वाह,
3: कर रही थी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो कार्यक्रम है आपकी पसंद का, कौन सा गाना आज सुनना चाहेंगे?
3: ये फूल दो माली का सुनवा दीजिए, पर्दा हटा दो मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले कोई घर नहीं।
2: तो आपका गीत हमें मिल गया है कार्यक्रम में फोन करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू मैडम।
2: तो लीजिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत।
4: ये पर

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है
1: हेलो
0: जी। नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: जी। नमस्ते मैडम,
0: आपका नाम जान सकते हैं?
1: जगत सिंह बोल रहा मैडम। जगत सिंह
0: जगत सिंह जी। कहाँ से बात कर रहे हैं जगत सिंह जी?
1: जी, मैं ग्राम पिपली हमारा तहसील भी कौन चला रहा है जी।
0: कैसे हैं आप?
1: मैडम जी अच्छे हैं, खाना खा लो
0: खाना खा रहे हैं?
1: जी।
0: अरे वाह, तो गीत कौन सा सुनेंगे खाना खाते हुए?
1: जी मैडम, वो सुना दो, बरसात हो रही है तो बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन आए। बरसात ही फिल्म को है जहाँ तक मैडम जी, सही
0: बरसात
1: पता तो नहीं आ रहा, हुआ खबर नहीं आ रही फिल्म का।
0: जी। जगत सिंह जी, गीत आपका मिल गया है, कुमार सानू की आवाज़ में है, बस आपको सुनवाते हैं। कार्यक्रम में
1: जी
0: आप शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।

0: फोन करें, गीत सुनें।
1: नमस्ते दीदी,
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: जयशंकर कुशवाहा, छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: कैसे हैं आप?
1: ठीक है दीदी, बहुत बढ़िया है। बड़ी मुश्किल में लगता है फोन अब।
0: हाँ, थोड़ा समय लग
1: जी
0: जाता
1: जी
0: है, सारे श्रोता जो हैं कोशिश कर रहे होते हैं तो थोड़ा।
1: फिल्म का नाम है,
0: जी
1: हेलो,
0: हाँ बताएं।
1: डोली सजना साथ निभाना।
0: अच्छा, डोली फिल्म का सजना साथ निभाना
1: जी
0: गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी दीदी, जी दीदी,
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं। मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले जी की आवाज़ में है, अब आएगा आपके रेडियो सेट पर।
1: नमस्ते दीदी।
0: जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आपको सुनवाई देते हैं गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत
1: हेलो
0: सुने। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: जी नमस्ते मैम, मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ।
0: नरेश प्रजापति जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: फिलहाल मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: इंदौर से?
1: वैसे मेरा गांव है रामनगर बमोरी गुना मध्य प्रदेश में।
0: अच्छा,
1: जी।
0: और फिलहाल आप इंदौर में हैं?
1: हाँ फिलहाल इंदौर में हूँ मैं, यहाँ लगभग 2011 से हूँ।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं एम्प्लॉय हूँ मैम, और ट्रक और बसेस बनते हैं यहाँ, मैन्युफैक्चर होता है।
0: अच्छा, वहाँ आप काम
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं। ठीक है जी, तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: देखिए मौसम बरसात का चल रहा है, तो बरसात से रिलेटेड भी आज एक फरमाइश लेकर आया हूँ मैं।
0: हाँ बताएं।
1: उनका नाम रहेगा आई मिलन की रात,
0: आई मिलन की रात।
1: सावन का महीना आया है कठा। वैसे सावन का महीना तो भी आया नहीं, लेकिन मौसम बरसात का आ गया है।
0: तो आई मिलन की रात फिल्म से आपने कहा कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं? सावन का

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: परमारणी दीदी, सारा सप्रेम, प्यार से नमस्कार
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है?
1: जी। मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ दीदी।
0: शारदा प्रसाद प्रजापति जी मथुरा से बात कर रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ दीदी, आपका आशीर्वाद है, माँ की बिहारी कृपा है, घर परिवार में सब लोग आनंद मंगल से रहते हुए आकाशवाणी से जुड़े रहते हैं, रेडियो से कार्यक्रम सुनते हैं, अच्छा लगता है। और जब आकाशवाणी मध्य प्रदेश भोपाल में फोन लगता है तो फिर कहना क्या, बहुत ही खुशी और प्रसन्नता होती है। दीदी, मैं रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और वर्तमान में मथुरा में निवास कर रहा हूँ।
0: अच्छा जी, क्या करते हैं आप वहाँ पर?
1: मेरे बच्चे जॉब में हैं और वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उन्हीं के साथ में मैं रहता हूँ और मैं विद्युत विभाग में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ
0: अच्छा,
1: और घर में रहते हुए सेवानिवृत्ति का आनंद ले रहा हूँ और आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो गीत कौन सा आज सुनना चाहते हैं आप?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु झील।

0: बहुत ही सुंदर प्यारा सुरीला गीत आप सुंदर करना चाहता हूँ।
1: शारदा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में प्रतिभागिता करने के लिए। और अब आपको सुनवाई देते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म जीवन मृत्यु से।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: हेलो, आकाशवाणी भोपाल।
0: जी आकाशवाणी भोपाल से बात कर रहे हैं, आप कौन बात कर रहे हैं?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी, विजयनगर, चाणक्य चौक।

0: गाजियाबाद से बोल रहा था।
1: कैसे हैं आप?
0: बस ठीक है जी, प्रभु की कृपा है।
1: क्या करते हैं मनोहर जी?
0: ये मेरी कपड़े की शॉप है और मैं यहीं पे अपना संगीत से जुड़ा रहता हूँ।
1: बहुत बहुत अच्छी बात है। क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
0: मौसम कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है। इस समय धूप खिला हुआ है, उमस भरी गर्मी है।
1: तो गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आज फिर?
0: ये सुनना चाहते हैं जी, फिल्म का नाम है रॉकी, क्या यही प्यार है। ये हमारे दोस्त हैं हेमंत, उनके पसंद।
1: रॉकी फिल्म का गीत आप अपने दोस्त के लिए सुनवाना चाहते हैं? हेलो मनोहर जी, आपका आवाज़ आ रही है जी? शायद तकनीकी खराबी के कारण कॉल कट गया है। मनोहर जी कोई बात नहीं, गीत आपका हमारे पास उपलब्ध है। अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म रॉकी से।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने
1: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
0: जी। किन से बात हो रही है
1: जी? मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आपका शुभ नाम तो बताइए, कितनी प्यारी आवाज आप।
0: जी मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: अच्छा अच्छा रक्षा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार।
0: नमस्कार, तो कैसे हैं आप, क्या चल रहा है?
1: बिल्कुल रक्षा जी, बस बैठे हैं, दुकानदारी करते हैं, तो दुकानी पे बैठे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आपका।
0: किस चीज की दुकान है आपकी?
1: सारी दुकान, हर चीज की दुकान है, जितना सामान मिलता है किराना स्टोर का सब सामान मिलता मिलेगा।
0: अच्छा, किराने का सामान
1: जी
0: रखते हैं, ठीक है। फूलचंद जी, तो कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं आप?
1: जी बिल्कुल रक्षा जी, अभी जो है हमारे यहाँ छतरपुर जिले में बादल बहुत छाए हुए हैं, काले काले बादल हैं, तो ऐसे में बार बार मन करता है कि ऐसे ही एक गीत सुन लूं।
0: जी
1: फिल्म का नाम है गजब और गीत की बोल है कि ए हवा ए घटा तुझे क्या है पता, अब के बरस जो बरसेगा वो सावन कैसा होगा, सावन जैसा भी होगा लेकिन मेरा साजन कैसा होगा। बहुत प्यारा गाना है, लता जी की आवाज में है।
0: ठीक है जी, फूलचंद जी आपको ये गीत सुनवाते हैं आपकी पसंद का।
1: बहुत बहुत नमस्कार। और ये गीत जो है प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदे दिनकर सिंह और जो है आपको डेडिकेट रहेगा, और पूनम जी है कानपुर से
0: जी,
1: तो आप सभी श्रोताओं को जो है हमारे जितने मित्र हैं सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी। अब आपको सुनवाई देते हैं गीत आपके पसंद का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: नमस्ते, कार्यक्रम में फोन किया आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: मैडम नमस्ते, मैं सुमित बात कर रहा हूँ MP धार से।
0: कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताइए क्या हाल चाल है।
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या चल रहा है?
1: जी अभी बस कुछ देर बाद ऑफिस जाने की तैयारी है। मेरा ऑफिस दिन में होता है 1 से शाम 7 बजे के बीच।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: मैं म्यूजिक लेक्चरर हूँ।
0: अरे वाह, अरे वाह।
1: मेरी किन से बात हो रही है?
0: मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: रक्षा जी,
0: जी
1: अच्छा चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: आप मुझे सुनवा दीजिए, चूंकि अब बरसात का मौसम कहीं ना कहीं दस्तक दे रहा है,
0: जी
1: तो आप मुझे सुनाइएगा बरखा बहार। आशा जी की एक रचना है, ये थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का गीत है ये।
0: थोड़ी सी बेवफाई।
1: हाँ इसका बरखा बहार देखिए, अगर मिल जाता है तो नहीं फिर मैं दूसरा बताता हूँ।
0: ये बरसे फुहार
1: बरसे फुहार,
0: है
1: सॉरी,
0: ना?
1: हाँ
0: जी
1: हाँ यही वाला है।
0: जी जी ये गीत तो हमारे पास है उपलब्ध।
1: और बहुत अच्छा गीत है, आप सुनिएगा इसको, बहुत अच्छा गीत है ये।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुमित जी आपको ये गीत सुनवाएंगे आशा भोसले की आवाज़ में, और कार्यक्रम में आपने प्रतिभागिता की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी आपको बहुत बहुत नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: पेश है इस घंटे की खास खबरें। आज मुहर्रम है, ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि उनका त्याग साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौके पर आज कई जगहों पर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से नशा मुक्ति क्विज प्रारंभ कर रहा है, जो कि 15 जुलाई तक चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति बच्चों और युवाओं को जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में इस विषय को सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत 13 जिलों में जिन सिंचाई परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो गए हैं, इससे 6 माह में 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी की चुनौती देने की विंडो खोल दी गई है। वेबसाइट पर जाकर विद्यार्थी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जर्मनी में चल रही ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत कुल 25 पदक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर है, और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। यह मैच शाम 6 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की

0: खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम लेकर आए हैं आपकी पसंद पर बेहद खूबसूरत गीत जिसे आपने ही चुना है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को आपकी पसंद यानी फिल्म एक दूजे के लिए से। और ये गीत गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इस खूबसूरत गीत को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने इसी गीत को सुनना चाहा था। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ और इनके पूरे राजावत परिवार ने। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हीरो से। स्वर हैं रेशमा के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतमय बनाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, इस गीत की फरमाइश हम तक लिख भेजी थी जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास बंटा बेली जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार, श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली वैष्णवी, अनरत रेखवार, हल्ले लल्लू और ऋषि रेखवार ने इसी गीत को पसंद किया था। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। अब हम आपको सुनाते हैं फिल्म सनम बेवफा का ये गीत और स्वर हैं विपिन सचदेवा के। ये गीत लिखा है सावन कुमार ने और संगीत है महेश किशोर का। इस गीत को सुनना चाहे कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने इसी गीत को पसंद किया है। शाहनगर यवतमाल से राहुल मनबर।

फिल्म दिल का ये गीत। गीत लिखा है समीर ने, स्वर हैं उदित नारायण और अनुराधा पुडवाल के।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब समय अंतराल का।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी का आठवां भाग।

0: पिछली कड़ियों में आपने जाना कि देश निकाले की सजा प्राप्त नर्तकी भुवन मोहिनी को ढूंढते हुए राजकुमार विजयश्रवा इंद्रप्रस्थ पहुंचा, जहां भुवन मोहिनी राजा आदित्य सेन के आश्रय में थी। राजा आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजयश्रवा से कराना चाहते थे, परंतु राजकुमारी के प्रति आकर्षित होने के बावजूद विजयश्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। राजकुमार ने चंद्रहासिनी से साफ साफ कह दिया कि यदि वो उसके मन से भुवन मोहिनी के स्थान को छुड़वाना चाहेगी तो बदले में अपने लिए मात्र घृणा प्राप्त करेगी। राजकुमार की शर्त को चंद्रहासिनी ने स्वीकार कर लिया। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजयश्रवा के माता पिता भी आए और वहीं उन्होंने अपनी भावी वधु को पसंद भी किया। वहां राजकुमार ने राजमाता को आश्वासन दिया कि वो भारतीय सीमा पर आक्रमण करने वाले हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रहासिनी से विवाह करेगा। इंद्रप्रस्थ में राजाओं की सभा में विजयश्रवा को भारतीय सेना का सेनापति बनाया गया और उसने सुप्तप्राय लोगों में नई चेतना भर दी। उसने ये भी कहा कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा। वो वापस चलने के लिए भुवन मोहिनी को कहता है, परंतु चंद्रहासिनी भी साथ में आती है। अब आगे क्या होता है, सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 8वीं कड़ी में।
1: सावधान, सम्राट दुमित सेन पधार रहे हैं।
2: सम्राट दुमित सेन की जय हो।
3: क्या बात है, दरबार में आज सन्नाटा क्यों है? युवराज विजयश्रवा, आज की कार्यवाही आपको आरंभ करनी है ना?
4: जी सम्राट।
3: तो फिर विलंब क्यों?
4: सम्राट, इस सभा में हूण अधिनायक के दो दूत भी उपस्थित हैं, जो अधिनायक का पत्र लेकर आए हैं। इस पत्र पर त्वरित कार्यवाही होने की आवश्यकता है।
3: पत्र को पढ़ा जाए।
4: आज्ञा सम्राट। इस पत्र में हूण अधिनायक ने लिखा है कि या तो भारतीय सम्राट प्रत्येक सैनिक पदाधिकारी के लिए सर्वश्रेष्ठ सुंदरी प्रदान करें और एकत्रित राजकोष का 2/3 धन और राजकीय परिवार की सर्वश्रेष्ठ राजकुमारी जो अनिंद्य सुंदरी हो, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में अपराजिता सिद्ध हुई हो, सैनिक अधिनायक को समर्पित करें और साथ ही पराजय को स्वीकार करते हुए हूणों के सैनिक अधिनायक को प्रतिवर्ष साम्राज्य की आय का आधा भाग प्रदान करते जाएं। यदि ऐसा किया गया तभी रक्त सागर को भरने वाला विकराल युद्ध टाला जा सकेगा, अन्यथा भारत देश की भूमि में ऐसा भयंकर युद्ध होगा जिसमें भारतीय परंपरागत वैभव की होली जलाई जाएगी, भारतीय सुंदरियां बलात् लूट ली जाएंगी और सर्वनाश का तांडव देश के कोने कोने में दिखलाई पड़ेगा।
3: ऐसा अपमानजनक पत्र लिखने का दुस्साहस! मन तो करता है कि ऐसे पत्र को लाने वाले दूतों की खाल उतरवा दें, परंतु यह हमारी परंपरा नहीं है। मैं दरबार में उपस्थित सभी सभासदों के चेहरों पर आ रहे भावों को देख रहा हूं।

0: मैं तमतमा रहे युवराज के चेहरे को भी देख रहा हूं। यहां पर साम्राज्य और राज परिवार की अन्य महिलाएं भी उपस्थित हैं। मैं उनके भी मनोभावों को भली भांति समझ रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि भावी सम्राट विजय शर्मा की क्या राय है।
1: सम्राट, शीघ्र ही युद्ध का बिगुल फूंकने का आदेश दें। इस अपमान भरे पत्र ने हमारे राष्ट्रीय सम्मान को चुनौती दी है। हमारे हृदय शत्रु के रक्त से होली खेलने के लिए उतावले हैं सम्राट। हमारे हाथ उन पामरों के मस्तक काटकर पैरों की ठोकरों से कुचल देंगे।
0: महिलाओं और समस्त सभासदों, मेरे चिरंजीव युवराज ने शत्रु के पत्र के प्रत्येक अक्षर को आप लोगों के समक्ष बड़े साहस पूर्वक पढ़कर सुनाया। आप सब लोगों ने जाना कि संधि की शर्तें भारतीय गौरव परंपरा के विपरीत हैं। दूसरी ओर युद्ध को स्वीकार किया जाए तो महान सर्वनाश को स्वीकार करना पड़ेगा। आज राष्ट्रीय स्थिति यह है कि समस्त देश बौद्ध मतावलंबी और अहिंसा का समर्थक हो चुका है। एक प्रकार से राष्ट्रीय धर्म ने युद्ध का निषेध कर रखा है। अधिकांश भारतीय नरेश अहिंसा धर्म द्वारा दीक्षित हैं, जो संभावना है कि रक्त से सने हुए युद्ध के विपरीत अपना समर्थन करेंगे। शत्रु ने जो दो शर्तें संधि के लिए प्रस्तुत की हैं, वो मुझ जैसे युद्ध प्रिय क्षत्रिय नरेश की विचारधाराओं के सर्वथा विपरीत है। मैं कायरता को स्वीकार करने से कहीं अधिक रक्त सागर में निमग्न होना पसंद करता हूं। मैं अहिंसा का सम्मान करते हुए भी माताओं, बहनों और बेटियों की लज्जा को निर्लज्ज बनकर शत्रु को नहीं समर्पित करना चाहता। भले ही मुझे हिंसक युद्ध द्वारा रक्त सागर को उद्वेलित करना पड़े। वीर प्रसवनी भारत वसुंधरा वीरांगनाओं के अपमान को सहन करने में असमर्थ है। अस्तु, मेरा प्रबल समर्थन युद्ध के पक्ष में है, फिर भी मैं अपना निर्णय नहीं लादना चाहता। समस्त सभासद आपस में निर्णय करके मुझे ये बताएं कि वे संधि चाहते हैं अथवा युद्ध।
2: सम्राट, मैं इस विषय में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं।
0: आज्ञा है अमात्य ऋषभदेव।
2: सम्राट, मैंने इस संबंध में समस्त राजाओं महाराजाओं की सहमत या सहमत जानने का सफल प्रयास किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जैसा आपने कहा, अधिकांश राजा महाराजा अहिंसावादी हैं और वो किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं चाहते। ये राजा महाराजा राष्ट्र को रक्त सागर में निमग्न करने से अधिक श्रेष्ठकर हूणों के द्वारा मांग पूरी किए जाने के पक्ष में। उनका कहना है कि हूणों द्वारा मांगे गए धन का जो भाग राजकोष से दिया जा सके दिया जाए और शेष भाग अधिकांश नरेश मिलकर अपने अपने राजकोष से पूरा कर देंगे। शेष बची कुछ सहस्त्र सुंदरियां जो हूण सैनिक अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली हैं, उन्हें भी प्रत्येक नरेश राज की धनदान के अनुपात से एकत्रित कराकर सम्राट को सौंप देंगे और सम्राट व्यापक जनहित और राष्ट्रहित में मुझे समस्त राजाओं महाराजाओं की ओर से ये कहने में संकोच नहीं है कि हूण अधिनायक को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में महाराज आदित्य सेन जो इंद्रप्रस्थ के नरेश हैं अपनी राजकन्या चंद्रहासिनी का विवाह कर दें। संभवतः है चंद्रहासिनी सौंदर्य प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध होगी। इस प्रकार राष्ट्र के अपार जनधन का सर्वनाश रोका जा सकेगा। अन्यथा प्रस्तावित धन दान कुछ सहस्त्र सुंदरियां और चंद्रहासिनी का विशेष दान उस सर्वनाश का एक साधारण भाग भी न होगा जो युद्ध की विभीषिका और सर्वनाश के पश्चात राष्ट्र को भोगना पड़ेगा। मुझे मात्र यही कहना था राजन।
0: अमात्य ऋषभदेव, क्या आप जानते हैं आपने अभी क्या कहा है? आपकी बातें सुनकर यहां उपस्थित दो हूण दूतों के चेहरे खिल उठे हैं, मानो उनकी मनोकामनाएं अब प्रयास ही पूर्ण हो गई हों और बाकी सभा तो मरघट सदृश बन चुकी है। महाराज आदित्य सेन की सुपुत्री राजकुमारी चंद्रहासिनी जो इस सभा में अन्य महिलाओं के साथ स्वयं बैठी हैं के ऊपर क्या प्रभाव हुआ होगा आपके इस प्रस्ताव का, कुछ कल्पना है आपको? मेरे स्वयं के कानों को आप

0: आपकी बातें पिघले सुवर्ण जैसी प्रतीत हुई हैं अमात्य। हमारे राजा महाराजाओं की इस कायरतापूर्ण हिम्मत से मेरी इन वृद्ध आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आज हमें ज्ञात हुआ कि हमारा रक्त पानी हो चुका है। पानी।
1: ठहरिए सम्राट।
0: भुवन मोहनी, आज हम लज्जित हैं। हमें सभा में ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं।
1: सम्राट, सभा स्थल के मध्य आकर मैं आपके चरणों में अभिवादन करती हूं। आपकी पीड़ा मात्र आपकी नहीं है सम्राट, इन सुवर्ण जटित चौकियों पर रखी नग्न तलवारों का औचित्य ही क्या यदि वो राष्ट्र की आन बान और शान को न बचा सके। सम्राट, यहां पर उपस्थित राजपूती शान को यद्यपि अच्छा तो नहीं लगेगा कि एक नर्तकी इसे अपने हाथों में ले, परंतु क्या करूं, विवशता है, क्योंकि ये नर्तकी भी इसी राष्ट्र की कन्या है,
2: कन्या है, कन्या है।
1: इसे राष्ट्र की, जिसकी गौरव गाथा को आज इस सभा में एक निकृष्ट वाणी ने कलंकित करने का प्रयत्न किया। सम्राट, जो व्यक्ति हमारी धरती को कलंकित करे वो मात्र मांस का एक पिंड है, और जो प्राण हमारी मर्यादा को गर्त में गिराने का काम करे वो प्राण निष्प्राण होने के लिए ही उपयुक्त है।
0: भुवन मोहनी,
1: सम्राट, आपके श्री चरणों में राष्ट्रद्रोही आमात्य ऋषभ देव का सिर समर्पित है।
0: ये तुमने क्या किया? आमात्य ऋषभ देव का शिरच्छेद कर दिया?
1: पूज्य सम्राट, यदि मैंने राजसभा का अपमान किया है तो सम्राट अपने हाथों मुझे मृत्यु दंड प्रदान करें। मैं विवश थी सम्राट, लुटेरी जातियों के सेनानियों को तुष्ट करने के लिए भारतीय महिलाओं के सतीत्व और नारीत्व का उपहासास्पद निम्नदान एक राष्ट्रीय अपमान था जिसे महामात्य द्वारा प्रस्तावित किया गया। सुनकर मैं अपने को ना रोक सकी। क्या आज राष्ट्र की वीरता सो गई है? कभी सिंहों के साथ प्रणय लीला रचाने वाली भारतीय सिंहनी नारियां असंस्कृत बर्बर नीच और लुटेरे आक्रामकों की विलास पूर्ति का साधन बनेंगी? इससे तो अधिक उपयुक्त ये होगा कि भारतीय सुंदरियों को कहा जाता कि वो अपने सतीत्व को लुटेरों की वासाग्नि में स्वाहा करने से उपयुक्त चिता की लपटों से आलिंगन करना समझें। भारतीय नारियों का बलिदान सर्वदा अमर रहा है, वो अपनी परंपरागत बलिदानी भावनाओं के लिए एक नहीं सहस्त्र बार अपने तुच्छ शरीर को स्वाहा करने के लिए प्रस्तुत है। किंतु ये कैसा अधापतन लाने वाला नीच प्रस्ताव है कि सिंहनी नारियां कामी कुत्तों और श्रृंगालों की वासना पूर्ति का साधन बने। सम्राट, मैं उपस्थित राजसभा के वीरों से निवेदन करूंगी कि या तो वे समर भूमि में शत्रु से मोर्चा लेने के लिए कटिबद्ध हों, या वे हमारी चूड़ियां धारण कर अंतापुर में जाकर बैठ जाएं। भारतीय नारियां अपनी मर्यादा की रक्षा में स्वयं जुट जाएंगी। महामात्य ने जिस नीच मुख से राजकुमारी चंद्रहासिनी को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी के रूप में हुणों के अधिनायक के साथ प्रणय संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव किया था, उसी के दंड स्वरूप उनकी समस्त ज्ञान इंद्रियां उनके तुच्छ शरीर से विलग की जाकर श्रृंगालों की भोज्य वस्तु बनने के लिए राजसभा के चरणों में लौट रही हैं, और मैं अपने किए का प्रतिफल भोगने के लिए तत्पर हूं। किंतु स्मरण रहे सम्राट, चंद्रहासिनी एक देवता की प्रेमार्धी बन चुकी हैं। वो किसी अधम राक्षस की वासना अग्नि के तुष्टि का कभी भी साधन नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी, नहीं बनेंगी।
0: उठो बेटी, मेरे हृदय से लग जाओ। मृत्युदंड उन्हें ही दिया जाता है जो स्वराष्ट्र के सम्मान के प्रति कृतघ्न हैं।

0: उठो।
1: सम्राट,
0: महामात ने स्वयं वो दंड प्राप्त कर लिया जो भारतीय वीरांगनाओं और राष्ट्र की मर्यादा को खंडित करने वालों के लिए दिया जाता। मैं तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा।
2: सैनिकों, हुरदूतों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो।
3: मात्र कारागार नहीं, इन्हें भी मृत्यु दंड मिलना चाहिए युवराज।
0: भुवन मोहिनी ठीक कह रही हैं युवराज, हम आदेश देते हैं कि इन दोनों ही हुरदूतों को अविलंब मृत्यु दंड दिया जाए, ताकि ऐसे घृणित प्रस्तावों को भेजने और ले आने से पहले कोई 100 बार सोचे। हमारी आज्ञा का पालन अविलंब हो।
2: ले जाओ सैनिकों, चलो।
4: सम्राट, मैं राष्ट्र रक्षा के लिए संकल्पित वीरों के भाल को स्वयं कुमकुम का टीका लगाऊंगी।
0: अवश्य साम्राज्ञी।
4: हे माता के वीर सपूतों, मुझे इससे अधिक कुछ नहीं कहना है कि राष्ट्रीय सम्मान और देश की वीरांगनाओं की रक्षा का भार तुम लोगों के सबल कंधों पर आ टिका है। भुवन मोहिनी इस गौरवमयी युद्ध की ध्रुव तारा है। हम कर्तव्य भ्रष्ट न हो, इस आदर्श को हमें भुवन मोहिनी से ही ग्रहण करना चाहिए। आप सब लोग मृत्युंजय बनकर इस युद्ध में लग जाएं, सफलता आपकी चेरी होगी, यही हमारा शुभाशीर्वाद है।

0: महाराज आदित्य सेन को प्रणाम।
1: आयुष्मान युवराज विजय शर्मा, राजकुमार, हूणों के साथ युद्ध में मैं आपकी इच्छा अनुसार आपके साथ हूं।
0: महाराज, ये आपकी महानता है। यद्यपि आपकी सेना धारा सेना से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है, फिर भी आपने हमारा नेतृत्व न केवल स्वीकार किया अपितु उसकी अनुशंसा भी की। महाराज, हमारी सेना चार टुकड़ियों में विभक्त है, पैदल सेना, अश्वारोही, गजारोही और रथारोही।
1: और हमारे पास तलवार, भाला, खाना, तीर, धनुष, परशु, गदा, कुलिश, दंड, चर्म, त्रिशूल और सिरोही आदि अस्त्र शस्त्र पर्याप्त मात्रा में हैं। राजकुमार, मैंने अपने गुप्तचरों के द्वारा, जो बड़ी ही चालाकी से हूणों की सेना में सम्मिलित हो गए थे, कई जानकारियां प्राप्त की हैं।
0: बहुत अच्छा, हमें पता चला है कि हूण दूतों के मारे जाने का समाचार मिलने पर हूण सेनापति तुरंत आक्रमण करने के लिए निकल पड़ा है।
1: आपने ठीक ही सुना है युवराज, परंतु ये भी जान लीजिए कि जैसे ही उसे पता लगा कि समस्त भारतीय राज्य मिलकर युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और इंद्रप्रस्थ के मार्ग को चारों ओर से घेर लिए हैं, तो उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
0: परंतु हूण वास्तव में लुटेरे हैं, धन का लालच उन्हें युद्ध की ओर अवश्य धकेलेगा।
1: हाँ, आपको याद होगा युवराज कि पिछले 6 महीने से वो सीमावर्ती क्षेत्रों में लूटपाट और हत्याएं कर रहे हैं।
0: हम तैयार हैं इंद्रप्रस्थ नरेश, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस दिन हूणों से हमारा सामना होगा।
1: ये ध्वनियां कैसी हैं?
0: लगता है हूणों ने आक्रमण कर दिया है। महाराज, सेना को आदेश दें कि वो कूच करें।
2: कूच करो।
3: अरे, भारत की सेना इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे, ये पराक्रम कहां से आ गया इसमें? हमारे सैनिक तो गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। अगर हम हार गए तो ये हमेशा के लिए ताकतवर हो जाएंगे। क्या करूं? हाँ, चूंकि मैं एक बलशाली पहलवान भी हूं, तो मैं भारतीय सेनापति को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। कौन है भारतीय सेना का सेनापति? बोलो, कौन है? कौन है सेनापति? बोलो।
0: हम हैं सेनापति। क्या हो गया हूणों अधिनायक? ये पुकार क्यों लगाने लगे? बोलो, क्या कहते हो? आत्मसमर्पण करना है तुम्हें?

0: आत्मसमर्पण हमने नहीं सीखा है सेनापति, आत्मसमर्पण। अगर तुम वाकई योद्धा हो तो आकर हमसे द्वंद युद्ध करो। बोलो मंजूर है?
1: मंजूर है।
0: तो फिर अपनी सेना को आदेश दो कि वो लड़ाई बंद करें। अब इस जंग का फैसला हम दोनों की कुश्ती से ही होगा।
1: चलो यही सही। सैनिकों रुक जाओ।
2: युवराज युद्ध को क्यों रोक रहे हैं आप?
1: महाराज आदित्य सेन हूण सेनापति अब हमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता है।
2: द्वंद्व युद्ध?
1: हम चाहते हैं कि उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाए। चल आ जा हूण सेनापति, यदि अपने पिता के संतान है तो आकर हमसे द्वंद्व युद्ध कर।
0: आ जाओ, चलो आओ आओ आओ आओ आओ
3: महाराज आदित्य सेन, राजकुमार ने यह क्या किया? हम विजय के बिल्कुल समीप थे, ये द्वंद्व युद्ध क्यों?
2: शांत रहो सैनिक, अपने सेनापति पर भरोसा रखो, वो एक कुशल मल्ल योद्धा भी हैं।
3: परंतु महाराज हूण सेनापति लगातार आक्रामक हो रहा है। और हमारे सेनापति रक्षात्मक हैं।
2: देखते जाओ सैनिक।
1: अच्छा अब देख तू, अब मैं क्या करता हूं।
3: अरे वाह, अब हमारे सेनापति ने जमकर दांव लगाया है। अरे उन्होंने उसके अरे उसके दोनों पांवों को तोड़ दिया।
1: अब बस ये मेरा अंतिम प्रहार होगा, ले संभाल इसे।
3: हूण सेनापति मारा गया, हूण सेनापति मारा गया।
4: टूट पड़ो हूण सेना पर, एक भी जीवित न बचे। टूट पड़ो, टूट पड़ो।
5: बचाओ बचाओ, हम शरणागत हैं, हमारे प्राण बख्शो, हमारे प्राण बख्शो।
1: रुक जाओ, शरणागतों पर वार मत करो, इनके अस्त्र शस्त्र छीन लो और स्वदेश जाने दो।
5: हम स्वदेश नहीं जाना चाहते सेनापति, नहीं जाना चाहते, वहाँ शांति नहीं है। हम शांति से अपना जीवन यहीं भारत में व्यतीत करना चाहते, हमें स्थायी रूप से यहीं बसने की आज्ञा दीजिए।
1: तो फिर तुम सबको भारतीय जीवन आदर्शों को मानना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जीवन आदर्श ही मानव जीवन के सच्चे आदर्श है।
5: हमें स्वीकार है सेना नायक, हमें स्वीकार है, स्वीकार है।
3: सेनापति विजय शर्मा की।

0: आओ पुत्र विजयश्रवा, आओ हृदय से लग जाओ। हा, अपेक्षा के अनुरूप ही तुमने स्वयं को समर्थ, योग्य और पुरुषार्थ पूर्ण सिद्ध किया है। महाराज आदित्य सेन
1: जी सम्राट,
0: आपने विजय श्रवा को एक संरक्षक की भांति सहयोग दिया, हम आपके आभारी हैं।
1: धन्यवाद सम्राट। सम्राट, राजकुमार विजय श्रवा ने मात्र हूणों की सेना पर ही विजय प्राप्त नहीं की, अपितु उन्होंने हूण सैनिकों के हृदय पटल पर भी विजय प्राप्त की है। भविष्य का तो नहीं कहा जा सकता सम्राट, परंतु निकट के कई वर्षों तक के लिए भारत भूमि निरापद हो गई है।
0: इस प्रसन्नता की घड़ी में हमारी पुत्री भुवन मोहिनी कहाँ है?
2: दासी यहाँ है सम्राट।
0: दासी मत कहो स्वयं को पुत्री, आओ तुम भी हृदय से लग

0: तुम मेरी और राजकुमार की समस्त विजयों की रीढ़ हो। तुमने राष्ट्र के सुप्त वीरत्व भाव को जगाकर देश के युवाओं को सर्वोत्सर्ग का पाठ पढ़ाया है।
1: सम्राट, आपको बता दूं कि भुवन मोहिनी इस पूरे युद्ध में सैनिक वेशभूषा में राजकुमार की ढाल बनकर उनके संग रही है।
0: अच्छा,
1: भुवन मोहिनी का जितना भी सम्मान किया जाए कम होगा सम्राट।
0: सर्वथा उचित कहा आपने महाराज।
1: एक आग्रह है सम्राट।
0: कहिए इंद्रप्रस्थ नरेश।
1: इस शुभ अवसर पर ही यदि राजकुमार विजय शर्मा का विवाह राजकुमारी चंद्रहासिनी के साथ संपन्न करा दिया जाए।
2: इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती सम्राट।
0: आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली महाराज। अब इसमें विलम्ब कदापि न किया जाए। समस्त राजे महाराजे यहाँ हैं ही। अब हम सब धारा नगरी अपनी पुत्र वधू को लेकर ही जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत भुवन मोहिनी की 8वीं कड़ी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पहले की तरह आपूर्ति बहाल हो गई है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत कर रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और आईसीसी महिला 2020 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला करेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान होगा।

जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इसी सुविचार के साथ आज का महिला सवाल लेकर मैं हूँ आपकी रेडियो मित्र मंजू व्यास। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैनो इतिहास गवाह है कि जिसके इरादों में मजबूती रही उसने हमेशा जीत हासिल की। चाहे वह जीत सामाजिक हो, राजनीतिक हो, भावनात्मक हो या धार्मिक ही क्यों ना हो, ऐसा ही जीत हासिल करने और शहादत का एक पर्व है मुहर्रम। जी हाँ, मुहर्रम इस्लाम धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो हिजरी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम उल हराम में मनाया जाता है। बहनों, ये महीना इस्लामी समुदाय के लिए गहरा धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह न केवल नए साल की शुरुआत का प्रतीक है बल्कि यह उन घटनाओं को भी याद करने का समय है जो इस्लाम के इतिहास में अमर हो चुकी हैं। इस महीने की 10वीं तारीख, जिसे अशूरा के नाम से जाना जाता है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद दिलाती है। बहनों, इस महीने में पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन, उनके परिवार और अनुयायियों ने 680 ईस्वी में करबला के मैदान में यजीद की सेना के खिलाफ सत्य, न्याय और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। करबला की घटना इस्लाम के इतिहास में एक ऐसी मिसाल है जो साहस, बलिदान और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की भावना को दर्शाती है। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की तानाशाही और अन्यायपूर्ण शासन के सामने झुकने से इनकार कर दिया और अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा दी। इस शहादत ने मुहर्रम को शोक, सम्मान और आत्मचिंतन का प्रतीक बना दिया। इस दिन लोग काले वस्त्र पहनते हैं जो शोक का प्रतीक है और कई स्थानों पर ताजिया निकाले जाते हैं। ताजिया करबला में शहीद हुए लोगों की कब्रों का प्रतीकात्मक रूप होता है, जिसे बड़े सम्मान के साथ जुलूस में ले जाया जाता है। ये जुलूस शांति और एकता के साथ आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोग मातम करते हैं और इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहनों, मुहर्रम पर्व केवल शोक मनाने का अवसर नहीं है बल्कि उन लोगों को आत्ममंथन और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सिद्धांतों और सत्य के लिए खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए कितना भी बड़ा बलिदान क्यों ना देना पड़े। बहनों, करबला की घटना आज भी लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और मानवता की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। ये पर्व हमें एकजुटता, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश देता है जो आज के समय में और भी प्रासंगिक है। तो चलिए हम भी इस पर्व को मनाते हैं इस गीत के माध्यम से।

0: मैनो, अभी हम सुन रहे थे जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज में फिल्म दिल्ली 6 से ये गीत। प्रसून जोशी के गीत को संगीत से नवाजा था AR रहमान ने। मैनो, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा नजरिया जब कलम के सहारे कागज पर उतर आता है तो वो कविता का रूप ले लेता है। कविताएं समाज, देश, राष्ट्र और कवि की आत्मा का दर्पण होती हैं। कई बार कवि समाज के हर पहलुओं को समेटते हुए अपनी कविता के मोतियों को पिरो लेता है, और ये मोती जब एक माला में पिरोए जाते हैं तो वो काव्य पाठ का रूप ले लेते हैं। तो चलिए सुनते हैं कवियत्री इंदु प्रभा खरे से उनकी कविताएं। क्रम है काव्य पाठ।
1: मेरी प्रथम रचना नारी के संघर्ष, उसकी पीड़ा और उसके आत्मसम्मान की कथा कहती है, जिसे मैं इन पंक्तियों के साथ प्रारंभ करती हूँ। ठोकर खाकर भी अब जिसने संभल के चलना सीख लिया, अबला नहीं रही अब नारी, खुद को बदलना सीख लिया। मैं नारी

नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, हर युग में इस भूमंडल पर क्या जीती हूँ क्या हारी हूँ। मेरा जीवन शीतल छाया, मेरा जीवन शीतल छाया, ममता बनकर सब पर छाया, पर कलयुग की आंधी में क्यों मेरा जीवन ही मुरझाया। इसकी रक्षा की खातिर किसने सब कुछ अपना बार दिया, किसने इसको सम्मान दिया, किसने इसका है त्याग किया। युगों युगों से नारी जो संघर्ष और अपमान झेलती आ रही है उसके लिए मैं लिखती हूँ। शतयुग में सती हुई नारी, शतयुग में सती हुई नारी, त्रेता में सीता वन हारी, द्वापर में भी द्रौपदी बनकर अपमान सहे बारी बारी, द्वापर में भी द्रौपदी बनकर अपमान सहे बारी बारी। अब कलयुग में आकर जिसने अबला बनना स्वीकार किया, जब युगों युगों तक उसको ये अपमान सहना पड़े, तब उसने कलयुग में क्या स्वीकार किया उसको भी देखिएगा। अब कलयुग में आकर जिसने अबला बनना स्वीकार किया, कलयुग के पथरीले पथ की पीड़ाओं को अंगीकार किया, कलयुग के पथरीले पथ की पीड़ाओं को अंगीकार किया, कि अन्नपूर्णा बनकर जिसने भोजन का हर एक ग्रास दिया, कि अन्नपूर्णा बनकर जिसने भोजन का हर एक ग्रास दिया, दहेज प्रथा की अग्नि ने फिर उसको ही आकर ग्रास लिया, दहेज प्रथा की अग्नि ने फिर उसको ही आकर ग्रास लिया। और जब उम्र थी खेल खिलौनों की, और जब उम्र थी खेल खिलौनों की, तब बाल विवाह के फेरों ने बचपन भी जिसका छीन लिया, और कभी वृद्ध संग ब्याह रचा जीवन जिसका रंगहीन किया, और कभी वृद्ध संग ब्याह रचा जीवन भी जिसका रंगहीन किया। जब और नहीं कुछ शेष बचा, जब और नहीं कुछ शेष बचा, तब चिता पर जिंदा बिठा दिया, जब और नहीं कुछ शेष बचा, तब चिता पर जिंदा बिठा दिया, ढोल नगाड़े बजा बजा फिर सती प्रथा का नाम दिया, ढोल नगाड़े बजा बजा फिर सती प्रथा का नाम दिया, सती प्रथा का नाम दिया। मेरी इन पंक्तियों में नारी पीड़ा की कहानी समाप्त होती है, और नारी शक्ति के जागृत होते ही मैं क्या लिखती हूँ सुनिएगा। लेकिन चक्र चला फिर ऐसा, लेकिन चक्र चला फिर ऐसा, उसने पीड़ा को त्याग दिया, लेकिन चक्र चला फिर ऐसा, उसने पीड़ा को त्याग दिया, लेकर हाथों में अस्त्र शस्त्र शक्ति का फिर अवतार लिया, लेकर हाथों में अस्त्र शस्त्र शक्ति का फिर अवतार लिया। कलयुग में ही उसने अपने अपमान का फिर प्रतिशोध लिया, कलयुग में ही उसने अपने अपमान का फिर प्रतिशोध लिया, पहचान गई जो स्वयं को जब शक्ति का फिर आवाहन किया। इसलिए अब कहती हूँ, इसलिए अब कहती हूँ, नारी को अबला मत कहना, शक्ति का सागर है नारी, फूल भी है शूल भी है, दबी हुई है चिंगारी, छेड़ोगे खाक करेगी वह, अपना अपमान सहेगी वह, अपना अपमान सहेगी वह। श्रोताओं, अब तक आपने संघर्ष का स्वर सुना। अब प्रस्तुत है स्मृतियों और ब्रह की भावनाओं से ओतप्रोत मेरी अगली कविता, जिसका शीर्षक है तुम्हारी याद में। मैं अपनी द्वितीय रचना के लिए दो पंक्तियां कहती हूँ। वह दूर होकर भी हृदय के पास रहता है, वह दूर होकर भी हृदय के पास रहता है, हर याद में उसका ही एहसास रहता है, हर याद में उसका ही एहसास रहता है। सुनिए मेरी ये रचना। तुम ही

हैं। मैंने अभी हम सुन रहे थे काव्य पाठ। कवयित्री थी इंदु प्रभा खरे। मैनो आज की भागम भाग में हमारी जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। हम रात में देर से सोते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं और कभी कभी तो यूं ही पूरी रात कट जाती है और नींद हमारी आंखों से दूर भाग जाती है। जी हाँ, नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी, अत्यधिक काम का बोझ और डिजिटल दुनिया के प्रभाव के कारण कई लोग नींद की कमी से जूझ रहे हैं। ये समस्या आम हो चुकी है। ये केवल मनुष्य की उत्पादकता को प्रभावित नहीं करती, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। बहनों, तनाव और चिंता, व्यक्तिगत, पेशेवर या शैक्षिक तनाव नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप और

देर रात तक टीवी की नीली रोशनी हमारे स्कैंडियन रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को बाधित करती है। मेरो आज की अनियमित जीवन शैली नींद की कमी का एक मुख्य कारण है। कैफीन और अल्कोहल का अधिक सेवन करने से नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है।

सकती हैं, जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी का बढ़ जाना, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होना, स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है। डायबिटीज टाइप 2 की जो संभावना है वो अधिक हो जाती है। मोटापा और वजन बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ ही सामाजिक, भावनात्मक और पेशेवर जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। कार्य क्षमता में कमी आती है, व्यक्तिगत रिश्तों में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, खासकर वाहन चलाते समय। नींद की कमी से बचने के लिए सोने और जागने का समय आपको निर्धारित करना ही होगा। डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग सीमित करना होगा। सोने से कम 1 घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से आपको दूरी बनानी होगी। सोने के लिए अंधेरे और शांत वातावरण में रहना होगा। कमरे का तापमान भी नियंत्रित रखना होगा। योग और मेडिटेशन, ये 2 ऐसे रामबाण हैं जिसका उपयोग करके आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं और अपने नींद की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अगर हमने ये सारी चीज़ें नहीं की तो हम यूं ही पूरी रात करवटें बदलते रहेंगे, कुछ इस तरह से।

अभी हम सुन रहे थे फिल्म आपकी कसम में किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में ये सुरीला सा गीत। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सजाया था आरडी वर्मन ने। मैनो आपने देखा होगा कि अभी गर्मियों में हमारी स्किन तो रूखी हो ही जाती है, हमारे बाल भी तेज धूप के कारण और पसीने के कारण झड़ने लगते हैं और हमारे बालों को भारी नुकसान भी गर्मी के मौसम में होता है और वे रूखे और बेजान हो जाते हैं। बालों को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा सल्फेट मुक्त और हाइड्रेटिंग शैम्पू का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। इसके अलावा आप मेथी को भिगोकर और एलोवेरा जेल को मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर दोनों को अगर आप अपनी स्कैल्प पे लगाते हैं तो आपको ठंडक भी मिलेगी और बालों का रूखापन भी कम होगा और बाल झड़ेंगे भी कम। बाहर निकलते समय सिर को स्कार्फ या टोपी से ढकना बहुत जरूरी है और पर्याप्त मात्रा में जो पेय पदार्थ है, नारियल पानी है, गन्ने का जूस है, पानी है और इसके अलावा खीरा है, इन सब चीजों को हमें अपनी डाइट में शामिल भी करना होगा। नियमित रूप से हमें ट्रिमिंग करवाना चाहिए। बालों के दो मुहे सिरों को कटाने से बाल कम उलझते हैं और वे स्वस्थ रहते हैं और उनमें वृद्धि भी होती है। गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए और बालों की यूवी सुरक्षा के लिए स्प्रे या सीरम का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाल धोने के लिए हमेशा ठंडे या सामान्य पानी का ही इस्तेमाल करें। ज़्यादा गर्म पानी से बाल ना धोएं क्योंकि बालों की जड़ें गर्म पानी के संपर्क में आते ही कमज़ोर हो जाती हैं।

0: बालों को झड़ने से रोकने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन युक्त आहार जैसे अंडे, मछली, दालें और हरी सब्जियों को भी हमें शामिल करना होगा। बाल धोने से पहले तेल से मालिश करें और पुदीना या एलोवेरा जैसे ठंडक देने वाले बालों के मास्क को आप लगा सकते हैं। ब्लो ड्रायर या स्ट्रेटनर जैसे हीट टूल्स का इस्तेमाल कम करें। बालों की सुरक्षा करें और खूबसूरत दिखें, क्योंकि अच्छे घने लंबे काले बाल महिलाओं की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मैंने आपसे बात करते करते मुझे समय का तो पता ही नहीं चला और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि मैं आपसे विदा लूं। लेकिन चलते चलते दो पंक्तियां आपके साथ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र मंजू व्यास को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अनु रैकवार और साथियों की आवाज में।

ये गीत अभी आपने सुना बद्री प्रसाद खरे और उनकी साथियों की आवाज़ में। आइए अब आपको सुनाते हैं अगला गीत पंचम सिंह सेंगर की

और इसी गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। आइए आपको सुनवाते हैं रविंद्र दीक्षित की आवाज में ये भजन।

रविंद्र दीक्षित की आवाज़ में सुने आपने ये भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान था।

0: उल्टी दस्त ज्यादातर गंदा पानी पीने से होता है। हमेशा साफ पानी पिएं। पानी को कई तरह से साफ किया जा सकता है, उबालकर, फिल्टर से, क्लोरीन टिकिया से, पोटेशियम परमैंगनेट या फिटकरी से। डायरिया और हैजा से बचने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना ही होगा। बासा या गंदा भोजन और कटे फटे फलों के सेवन से उल्टी दस्त की संभावना बढ़ जाती है। उल्टी दस्त शुरू होते ही प्राथमिक रूप से जीवन रक्षक घोल ORS दें और जल्द ही डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखें, उल्टी दस्त की बीमारी डायरिया अथवा हैजा जानलेवा भी हो सकता है। साफ सफाई को अपनाएं, हैजा पेचिस दूर भगाएं।
1: उल्टी दस्त ज्यादातर गंदा पानी पीने से होता है। हमेशा साफ पानी पिएं। पानी को कई तरह से साफ किया जा सकता है। उबालकर, फिल्टर से, क्लोरीन टिकिया से, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर फिटकरी से। डायरिया और हैजा से बचने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखना ही होगा। बासा या गंदा भोजन और कटे फलों से उल्टी दस्त की संभावना बढ़ जाती है। उल्टी दस्त शुरू होते ही प्राथमिक रूप से जीवन रक्षक घोल ORS दें और जल्दी ही डॉक्टर से संपर्क करें। याद रखें, उल्टी दस्त की बीमारी डायरिया अथवा हैजा जानलेवा भी हो सकता है। साफ सफाई को अपनाएं, हैजा पेचिश दूर भगाएं।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम है वो कौन थी।

लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम वो कौन थी, संगीत दिया मदन मोहन ने और शब्दों में पिरोया था राजा मेहंदी अली खान ने। और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अगला गीत अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में ही।

0: गले लग जा फिल्म से सुना भी आपने गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने और शब्दों में पिरोया था साहिल लुधियानवी ने। और इसी के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके प्रयास एक मजबूत, स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने हेतु एकजुट होने का आग्रह किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा

0: कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस युद्ध को जीतने के लिए एक मंच पर एकजुट होने का आग्रह किया।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैव दवाइयों और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाइयों के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। सतना जिले में मुहर्रम का पर्व परम्परागत तरीके से मनाया जा रहा है। आगरमालवा जिले में ताजियों के जुलूस को सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। जबलपुर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में विशेष इबादत कर देश में अमन चैन, भाईचारे और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को खेती किसानी से जुड़ी आधुनिक और वैज्ञानिक जानकारियां दी जा रही हैं। पन्ना जिले के बीहरपुरवा गांव में कुआं खोदने के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के बाद विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की और झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में आज जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की प्रबंधन समिति की बैठक में नोडल अधिकारी ने दिव्यांगजनों के कल्याण की गतिविधियों की जानकारी दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे कुछ ही देर में दोपहर समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार

0: देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsonAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव SK और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि

0: श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: For our business,
2: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत

0: भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार साथियों, आपके साथ हूँ कार्यक्रम में मैं अनुजा। तो इस कार्यक्रम में आपके द्वारा भेजे गए जो बड़े ही प्यार से जो आप हमें पत्र लिखते हैं वो पत्र हम आपको यहाँ पढ़ के सुनाएंगे और आपके पसंद के गीत आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए बिना देर करे हम आपको सुनाते हैं पहला पत्र। हमें भेजा है जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड के पास खेलई जिला सागर से लक्ष्मण रेखवार ने, साथ ही में श्रीमती विनीता रेखवार, कुमारी वैशाली, वैष्णवी अनरथ रेखवार, हल्ले ऋषि रेखवार ने बंडा से, और उन वो चाहते हैं, उनकी फरमाइश है कि हम उन्हें दीवार फिल्म का गीत सुनाएं। तो आप उन्होंने फरमाइश की है और हम उसे पूरा ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपकी फरमाइश कार्यक्रम का पहला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

अभी आपने सुना दीवार फिल्म से गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। साहिर के बोल थे और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने, और इस गाने की फरमाइश करी थी बंडा से लक्ष्मण रैकवार और उनके परिवार ने। तो देखिए, हमने आपकी फरमाइश पूरी करी, अब चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। ये पत्र हमें भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने, और वो सुनना चाहते हैं याराना फिल्म से गीत किशोर कुमार की आवाज़, और गाने के बोल हैं छूकर मेरे मन को। जी, आपका पत्र भी हमें इसी तरह से हमारे मन को छूते हुए जाता है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में सुना अभी आपने गीत फिल्म याराना से, बोल थे अनजान के, और म्यूज़िक दिया था, संगीत दिया था राजेश रोशन ने, और आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। तो आइए देखते हैं अगला पत्र हमें किसने और कहां से भेजा है। अगला पत्र हमें भेजा है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने, और वो सुनना चाहते हैं फिल्म धर्मवीर से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ओ मेरी महबूबा गीत। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना भी आपने गीत फिल्म धर्मवीर से। आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और ये फरमाइश की थी डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से गजबीये परिवार ने। तो चलिए अब आपको बताते हैं, अगला पत्र हमारे पास आया है नेपाल पैलेस सागर से। तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन ने हमें ये पत्र भेजा है और वो चाहते हैं कि हम उन्हें अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म से गीत सुनाएं, जिसके गायक हैं नीरज श्रीधर, सुजैन डी मेलो और बोल हैं प्रेम की नैया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं उनकी पसंद का ये गीत।

श्रीधर की आवाज़ में सुना आपने ये गीत, नीरज श्रीधर और सुजन डीमेलो की आवाज़, और बोल थे इरशाद कामिल के, संगीत दिया था प्रीतम ने, और फिल्म का नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। और ये गीत फरमाइश की थी नेपाल पैलेस सागर से। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम में हमारे पास अगला पत्र किसका आया है। हमें अगला पत्र भेजा है, उन्होंने नमस्कार लिखा है, तो हम आपको यहाँ से नमस्कार करते हैं। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित और प्रतीक आर्य ने, उन्होंने नीचे लिखा है, हमारी फरमाइश किसी भी फिल्म के साथ पूरी करने का कष्ट करें। अरे कष्ट नहीं, हमें बहुत सुख महसूस होता है, खुशी होती है हमारे श्रोताओं के लिए उनकी पसंद के गीत सुनाने में। तो चलिए बिना देर करे आपको गीत सुनाते हैं हमारी पसंद का, हमें उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा।

0: उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में सुना भी आपने गीत फिल्म खाकी से, समीर के बोल थे और संगीत दिया था राम संपत ने। और इसी के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का खतरा राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों और युवाओं तथा देश के भविष्य के लिए खतरा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमरीका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी रचनाओं ने पीढ़ियों से भारतीयों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को जागृत किया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सबसे पहले आज की सांधिकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण आपको दे दें। सबसे पहले आपको आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे देते हैं। युवा साथी सुन सकते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी ठीक शाम 5:02 पर। वहीं शाम 6 बजे सुनिएगा एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम। सुर्खियों में कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा शाम 8 बजे, रात 8 बजे। खेल जगत कार्यक्रम सुनेंगे आप ठीक रात में 9:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे बेस्ट लिफ्टर ऑफ मध्य प्रदेश से सम्मानित भोपाल के पावर लिफ्टर अभिषेक बघेल से बातचीत। रात 10 बजे सुनिएगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा कलाकार राजेंद्र व्यास का वायलिन वादन, राग होगा पूरिया धनाश्री। आकाशवाणी भोपाल से सुन सकते हैं कार्यक्रम ग्राम सभा ठीक रात में शाम 7:21 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है। हाँ
0: निशा जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, विविध
0: क्या बात है, शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी।
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में हम
1: जी।
0: सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई है?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और तीन चार आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ। तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला, तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। तब के बरस भेज भैया को बागुल, सावन में लीजो बुलाएं।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम
1: जी
0: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: पूनम यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, लेकिन
0: पूनम जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं तो मतलब बस हाउस वाइफ है मैडम जी।
0: हाउसवाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी? पूरे परिवार का ख्याल
1: हाँ
0: रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ जी
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में। और ये कला जो
1: हाँ
0: होती ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब तो आपसे बारिश होके हटी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी, मैं श्वेता भारती, जिला ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ। जी
0: क्या हालचाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो।
0: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि
1: जी
0: आप
1: दीदी,
0: करती क्या है जिंदगी में?
1: घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात
1: जी
0: है।
1: जी
0: और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में।
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। वो रेडियो सुनती हूँ, विविध
0: गाती भी है।
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत
0: विविध
1: खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी,
0: जी, और गाती भी हैं आप
1: जी दीदी गाती हूँ। अच्छा,
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ। देवी
0: सुनाइए।
1: जी के मंदिर में लट सी बहारी आई, देवी जी के मंदिर में

0: जी से मांगी आई देवी जी की मंदिर में लट से बांधी आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
0: जी। सुरजीत
1: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: फिल्म का सुना दीजिए दीदी, कोई
1: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: भी सुना दीजिए।
1: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं
1: जी
0: में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार है, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी है या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया। अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हम हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें, ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी,
0: ये
1: ऐसा
0: बहुत
1: मेरा
0: सही
1: मानना।
0: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है और महिला को

0: आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सई जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है वो, मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज़ है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उन उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी
0: आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है। हाँ,
0: तो
1: पहले
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला, और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है
1: यह
0: आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ, मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और
1: हाँ,
0: आपको भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो
1: जी। रेडियो
0: बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, कौन
1: हेलो सहेली,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। जी
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी किसी
1: जी
0: को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है।
0: हम्म,
1: मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ, जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत
1: और
0: अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत
1: बहुत
0: आप

0: सुनना चाहती हैं।
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है, और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना
1: जी
0: गुनगुना के बताइए आप।
1: जी जी

0: बारे दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा।
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं
0: अच्छा
1: आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से। हाँ
0: हिसार, हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी, विविध
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती
1: थोड़ा
0: हैं, व्यायाम करती हैं?
1: बहुत बस घर के कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखी जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत जिंदगी है, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से देश भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही हैं, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ

0: संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली बीच में वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप
1: जी
0: तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला
1: मुझे
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है। अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। और जब
1: जी
0: हम योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना, तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार हैं, 400-24662, फिर से 400-24662। दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288। और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारी सखियों के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज़ है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलफेंक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

नमस्कार। मीडियो वेव 374.5 मीटर अर्थात 801 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। थोड़ी देर में न्यूज़ हेडलाइंस हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।

0: मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल से 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। वे कल बेंगलुरु में नाथ प्रभु श्री कैंपेगौड़ा की 517वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 में संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसका उद्देश्य खाद्य व्यवसायों के लिए अनुपालन आवश्यकताओं को उपयुक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। और भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:02 हुए हैं और यह समय होता है युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युववाणी का। आज की युववाणी आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे युवाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ पारुल पटेरिया, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम कुछ

महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो हमारी आज की पहली जानकारी होगी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। साथियों, मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जून यानी आज ही के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना और अवैध तस्करी को रोकना है। साथियों, मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इससे अनेक बीमारियां और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नशे की लत व्यक्ति की कार्य क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। इससे उसका भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। साथियों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग परिवार में तनाव और आर्थिक समस्याएं पैदा करता है। इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। अवैध तस्करी समाज में अपराध और हिंसा को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक सुरक्षा और शांति प्रभावित होती है। साथियों, युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। सही शिक्षा और मार्गदर्शन उन्हें इस बुराई से बचा सकते हैं। साथियों, सरकार और विभिन्न संस्थाएं नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाती हैं। इन प्रयासों से लोगों को नई दिशा मिलती है। साथियों, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को नशे के विरुद्ध जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। सामूहिक प्रयास से इस समस्या को कम किया जा सकता है। खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियां युवाओं को नशे से दूर रखने में मदद करती हैं। ये सकारात्मक जीवन शैली को भी बढ़ावा देती है। साथियों, ये दिवस नशा मुक्त और सुरक्षित समाज के निर्माण का संदेश देता है। सभी को मिलकर मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और तस्करी का विरोध करना चाहिए। साथियों, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग और अवैध तस्करी समाज के लिए गंभीर चुनौती है। जागरूकता, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों से ही नशा मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सकता है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और जानकारी मुहर्रम विषय पर। साथियों, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये त्याग, सत्य और बलिदान की याद दिलाता है। मुहर्रम इस्लाम का पवित्र महीना माना जाता है। ये नए इस्लामी वर्ष की शुरुआत करता है। साथियों, इस महीने में हजरत इमाम हुसैन को याद किया जाता है। उन्होंने सत्य के लिए बलिदान दिया था। साथियों, मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। इसका विशेष धार्मिक महत्व है। लोग इमाम हुसैन की शहादत को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। इससे त्याग की प्रेरणा मिलती है। साथियों, कई स्थानों पर ताजिए भी निकाले जाते हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस अवसर पर धार्मिक सभाओं का आयोजन भी किया जाता है। इनमें इमाम हुसैन के जीवन पर चर्चा की जाती है। साथियों, मुहर्रम में अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की शिक्षा देता है। ये सत्य और न्याय का संदेश भी देता है। लोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं। इससे मानवता और भाईचारे की भावना बढ़ती है। ये पर्व धैर्य, साहस और त्याग का प्रतीक है। इससे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथियों, मुहर्रम सभी को शांति और सद्भाव का संदेश देता है। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। साथियों, मुहर्रम त्याग, सत्य और मानवता का संदेश देने वाला पवित्र अवसर है। ये हमें अच्छे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। साथियों, ये तो थी एक जानकारी मुहर्रम विषय पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म रेस से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको सुनवा देते हैं वार्ता रक्तदान का महत्व विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी अंशिका चतुर्वेदी।
1: रक्तदान को महादान कहा जाता है। संसार में अनेक प्रकार के दान किए जाते हैं, जैसे अन्नदान, वस्त्रदान और धनदान, लेकिन रक्तदान एक ऐसा दान है जो सीधे किसी व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। रक्त का निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता है, इसका एकमात्र स्रोत मानव शरीर ही है। इसके लिए जब किसी मरीज को रक्त की आवश्यकता होती है, तब केवल एक रक्तदाता ही उसकी सहायता कर सकता है। हमारे देश में प्रतिदिन हजारों लोगों की दुर्घटना, गंभीर बीमारियां, ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा स्थितियों के कारण रक्त की आवश्यकता पड़ती है। कई बार समय पर रक्त न मिलने के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। ऐसे समय में रक्तदान करने वाला व्यक्ति किसी अनजान इंसान के लिए जीवनदाता बन जाता है। रक्तदान का सबसे सुंदर पहलू यह है कि इसमें ना तो धन की आवश्यकता होती है और ना ही किसी विशेष साधन की। कुछ मिनट देकर हम किसी का जीवन बचाने में योगदान दे सकते हैं। एक यूनिट रक्त कई लोगों के उपचार में उपयोगी हो सकता है। कुछ लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि रक्तदान करने से शरीर कमजोर हो जाता है। वास्तव में स्वस्थ व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान

पूरी तरह सुरक्षित होता है। मानव शरीर में कुछ समय में रक्त की कमी को पूरा कर लेता है, इसलिए डॉक्टरों की सलाह के अनुसार किया गया रक्तदान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है। रक्तदान हमें सामाजिक जिम्मेदारियों का भी एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी किया जाए। रक्तदान करने वाला व्यक्ति जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के सीमाओं के ऊपर उठाकर मानवता की सेवा करता है। जब किसी मरीज को रक्त चढ़ाना जाता है तब यह नहीं देखा जाता है कि रक्तदाता कौन था, वहाँ केवल एक ही पहचान होती है, मानवता। आज के समय में युवाओं की भूमिका रक्तदान के लिए क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। अधिक से अधिक युवा नियमित रूप से रक्तदान करें तो रक्त की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाती है। स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संस्थाओं को भी लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। रक्तदान केवल किसी की जान बचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे भीतर दया, करुणा और सेवा की भावनाओं को भी विकसित करता है। जब हमें पता चलता है कि हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी व्यक्ति का जीवन बचाए तो संतोष और खुशी मिलती है, उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। रक्तदान एक महान कार्य है। यह निस्वार्थ सेवा, मानवता और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है। हमें रक्तदान के महत्व को समझना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि किसी की जान बचाने से बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। रक्तदान महादान है, क्योंकि आपका थोड़ा सा रक्त किसी के लिए नया जीवन बना सकता है। एक बूंद रक्त अनेक जीवन का आशा। रक्तदान महादान, इससे बचती है किसी की जान। रक्तदान जीवन दान, मानवता की असली पहचान। आपका थोड़ा सा रक्त किसी को दे सकता है पूरा जीवन। आपका थोड़ा सा रक्त किसी को दे सकता है पूरा जीवन। खून का कोई विकल्प नहीं होता है। आपकी नसों किसी और की उम्मीद बन सकती है। आपकी नसें किसी और की उम्मीद बन सकती हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है, कभी किसी की जिंदगी देकर अमीर बनाई है। जाति और धर्म की दीवार टूट जाती है जब एक का रक्त दूसरों की रगों में दौड़ता है। रक्तदान करने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है, शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है और नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके अलावा इससे लगभग 650 कैलोरी बर्न होती हैं और मुफ्त स्वास्थ्य जांच जैसी ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन की जांच लाभ मिलता है। रक्तदान करने से आपका स्वास्थ्य और समाज के कई प्रमुख लाभ मिलते हैं। नियमित रक्तदान से खून में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है, जिससे दिल की बीमारियां और दिल का दौरा पड़ने का खतरा कम होता है। एक बार ब्लड डोनेट करने पर 650 कैलोरी तक बर्न होती है। रक्तदान को समाज में महादान कहा जाता है, क्योंकि यह मरते हुए व्यक्ति को नया जीवन देने की क्षमता रखता है। मानव शरीर में रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं है, इसे फैक्ट्री में नहीं बनाया जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आ जाती है, लेकिन यह तो पूरी तरीके से गलत फहमी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, जिसके दान के दौरान केवल छोटा सा हिस्सा 350 से 400 मिलीलीटर ही लिया जाता है। हमारा शरीर इस खून की भरपाई कुछ ही दिनों में खुद ब खुद कर लेता है। रक्तदान करने से कई स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इससे शरीर में नए रक्त कण का निर्माण होता है, दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। रक्तदान है सबसे बड़ा उपहार, इससे मिलता है जीवन को नया आधार। सबसे खूबसूरत बात यह है कि रक्त किसी जाति, धर्म, लिंग को नहीं देखता है। एक अनजान व्यक्ति द्वारा दिया गया खून किसी भी जरूरतमंद की रगों में दौड़कर उसकी जान बचा सकता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि जब हम शारीरिक रूप से सक्षम हो तो नियमित रूप से रक्त दान करें। हमारा छोटा सा प्रयास यह है कि घर का चिराग बुझने से बचा सकता है और समाज का अनमोल कड़ी की मजबूत कर सकता है। चिकित्सा विज्ञान में आज दुनिया में कितनी भी प्रगति कर ली हो, लेकिन वह प्रयोगशाला में खून बनाने में अब तक असमर्थ है। प्रगति ने यह व्यवस्था केवल इंसानी शरीर के भीतर ही रखी है। इसका सीधा और सरल मतलब यह है कि अगर आज अस्पताल में किसी जिंदगी और मौत के बीच जूझते मरीज को खून की आवश्यकता है तो उसकी जान केवल दूसरा इंसान के खून से ही बचाई जा सकती है। यही कारण है रक्तदान सिर्फ एक दान नहीं बल्कि महादान और जीवन दान का दर्जा दिया जाता है। जब हम रक्तदान करते हैं तो केवल कुछ मिलीलीटर तरल पदार्थ नहीं ले देते, बल्कि किसी निराश परिवार को उम्मीद, किसी बच्चे को उसका माता पिता और किसी माता पिता को उसका बच्चा सौंपते हैं। आज भी हमारे समाज में जागरूकता की कमी के कारण लोग रक्त दान करने से कतराते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि खून देने से शरीर में कमजोरी आ जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगे और उनका वजन कम हो जाएगा। विज्ञान और डॉक्टरों के अनुसार ये पूरी तरह

0: इसे गलत है। एक स्वस्थ के शरीर में लगातार पुराना खून नष्ट होता रहता है और नया खून बनता रहता है। जब हमारे रक्तदान करते हैं तो हमारे बोन मैरो सक्रिय हो जाता है और तेजी से नई स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। दान किए गए रक्त के तरल भाग प्लाज्मा की पूर्ति हमारे शरीर 24 से 48 घंटों में पानी और तरल पदार्थ के माध्यम से कर लेता है। हृदय स्वास्थ्य में सुधार। शरीर में आयरन की मात्रा अधिक होने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। रक्तदान करने से शरीर में आयरन का स्तर संतुलित रहता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। निशुल्क स्वास्थ्य जांच। रक्तदान करने से पहले हर दाता के खून की कई महत्वपूर्ण जांच जैसे हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, HIV आदि बिल्कुल मुफ्त की जाती है, जिससे अनजाने में भी सही शरीर की सेहत का पता चल जाता है। रक्त की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका कोई मजहब, जाति या रंग नहीं होता है। नस में बहने वाला लाल रंग यह कतरा हर इंसान का एक जैसा ही होता है। किसी हिंदू का रक्त किसी मुस्लिम की जान बचा सकता है और किसी अमीर का रक्त किसी गरीब का काम आ सकता है। यह बिना किसी भेदभाव के समाज को आपस में जोड़ने का सबसे बेहतरीन जरिया है। आपका रक्तदान किसी के चेहरे की मुस्कान। 18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसका वजन 45 किलोग्राम से अधिक हो हर 3 महीने में सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है। हमें अस्पतालों में खून की कमी के कारण किसी को दम तोड़ते हुए देखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। रक्तदान को हमें जीवन का एक नियमित हिस्सा और कर्तव्य बनाना चाहिए। आइए संकल्प लेते हैं कि स्वयं भी रक्तदान करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी पुनीत कार्य के जागरूक करेंगे, क्योंकि आपका दिया हुआ रक्त किसी के बुझते हुए जीवन के दीपक को दोबारा रोशन कर सकता है। अगर गहराई से सोचा जाए तो ईश्वर ने इंसान को कई अनमोल उपहार दिए हैं, जिसमें से जीवन सबसे अनमोल है। लेकिन उससे भी खूबसूरत बात यह है कि ईश्वर ने इंसान को ऐसी क्षमता दी है जिससे वह दूसरे व्यक्ति को मरते हुए देखकर दोबारा जीवन का उपहार दे सकता है। इसी क्षमता का नाम है रक्तदान।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता रक्तदान का महत्व विषय पर, जिसमें वार्ताकार थी अंशिका चतुर्वेदी। तो साथियों, कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म टाइगर जिंदा है से ये प्यारा सा गीत, जिसमें आवाज थी आतिफ असलम की, गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत से सजाया था विशाल शेखर ने। तो साथियों, इसी के साथ कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी वृक्षारोपण का महत्व विषय पर। साथियों, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। वृक्ष हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। साथियों, वृक्ष हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इससे जीवन संभव हो पाता है। पेड़ वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करते हैं, वे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। साथियों, वृक्ष वर्षा चक्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इससे जल की उपलब्धता बनी रहती है। पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, इससे भूमि की उर्वरता सुरक्षित रहती है। साथियों, वृक्ष अनेक पक्षियों और जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, वे जैव विविधता की भी रक्षा करते हैं। साथियों, पेड़ गर्मी को कम करके वातावरण को ठंडा रखते हैं, इससे जलवायु संतुलित रहती है। वृक्ष फल फूल लकड़ी और औषधियां प्रदान करते हैं, ये मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथियों, वृक्षारोपण से हरियाली बढ़ती है और प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है, इससे पर्यावरण आकर्षक बनता है। साथियों, अधिक वृक्षारोपण से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इससे वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। साथियों, वृक्षारोपण आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करता है, ये हमारा सामाजिक और नैतिक कर्तव्य है। साथियों, वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी वृक्षारोपण का महत्व विषय पर। तो साथियों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड थर्ड। पदों की संख्या है 6,565। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि है 30 जून 2026 एवं अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। शैक्षणिक योग्यता BE, BTEC, इंजीनियरिंग डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर विजिट करें। तो साथियों, इसी के साथ अब दीजिए अपने मित्र पारुल पटेरिया को इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आकाशवाणी जबलपुर से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत स्वीकार किया मैंने फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, शायर निदा फाजली, तर्ज बनाई उषा खन्ना ने।

अभी आपने तेरी मेहरबानियाँ फिल्म का ये गीत शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में सुना। यहीं संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात 9:15 पर स्पॉटलाइट कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात 8 सुर्खियों में आप सुनेंगे, जिसे हम अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी भोपाल से। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा शाम 6:00। लोक संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर सुनिएगा डॉक्टर राजकुमार जैन की गायी रचनाएं। शाम 6:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी सौम्या त्रिपाठी। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 7:21 पर झींगा पालन विषय पर डॉक्टर माधुरी शर्मा से ली गई भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात 10:00 से और फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन हम आप तक पहुंचाएंगे रात 10:30 पर। तो श्रोताओं, ये होंगे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम और अब सुने कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। कल सुबह 10:10 पर होगा विश्व दर्पण कार्यक्रम। रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर अखिल भारतीय विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम और रात 10:00 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से ये सभी कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 8:30 पर समन्वित कार्यक्रम साहित्यिक पत्रिका सर्जना, सुबह 11:00 से दोपहर 3:00 तक कार्यक्रम, शाम 5:02 से युवाणी कार्यक्रम और रात 8:00 सुर्खियों में, ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से रिले किए जाएंगे। सुबह 7:20 पर गुड मॉर्निंग जबलपुर कार्यक्रम लोक रसधार, सुबह 9:00 सुगम संगीत 9:30 और शाम 6:45 पर सुना जा सकता है वंदे मातरम गौरवगान की डेढ़ सदी। ये कार्यक्रम सुबह 10:05 पर प्रसारित किया जाएगा। कृषि जगत कार्यक्रम सुनवाया जाएगा शाम 7:21 पर। फिल्म संगीत सारंगा के अंतर्गत सुबह 10:20 पर आप सुनिएगा और शाम 5:33 पर और 8:15 पर। तो श्रोताओं, ये होंगे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। न्यूज हेडलाइंस अब हम आकाशवाणी भोपाल से रिले करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकियों को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेम्पल टूर आरंभ किया है। इस 11 दिन के रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश

0: प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थस्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारत आज बेलकास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से होगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है। और समय

0: समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की परती।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Happy birthday to you, Stephen!
5: Thank you.
4: How are you?
5: Happy birthday, Stephen! Thank you,
6: congratulations!
5: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
3: Oh, fine.
5: Thanks for coming in. Please come in.
4: Oh, yes, sure. Yes. Why not?
3: Come. Hey.
4: Come.
3: John, please come here.
4: Oh, sure. Yeah.
5: Join us for a drink.
1: जन्मदिन की

पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध

पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ১৯৮৫ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी।
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी

0: और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
2: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
2: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
0: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
0: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार?
7: हाँ जी बहुत ही, हम तैयार हैं।
6: वेरी गुड। तो

0: दी मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ, दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
1: सूरज।
0: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
2: बहुत आसान पूछते हो।
0: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
2: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
0: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी, फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
1: हाँ।
0: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
2: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
0: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है,
3: वो तारा होता है।
0: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक,
4: वो रात और दिन भी बनाता है।
0: एकदम सही, एकदम सही।
3: वो हमें धूप भी देता है।
0: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
2: धूप से एक ना अच्छी बात भी होती है।
0: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
2: विटामिन डी।
0: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
3: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
2: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा, इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
2: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
2: हाँ।
4: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
2: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
2: वो तेज चलती है, तो ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
3: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
3: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
2: मौसी वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
2: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
2: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ
3: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
1: सर्दी।
0: ओह ऐसी वाली सर्दी ना।
2: हाँ।
0: अच्छी लगती है सर्दी।
2: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
3: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
1: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है,
1: फिर भी जीवन दाता है,
0: धरती काटे चक्कर इसके,
1: धरती काटे चक्कर इसके,
0: लगे ये चलता जाता है,
1: लगे ये चलता जाता है,
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
1: सर्दी गर्मी बनते इससे,
0: ये दिन रात बनाता है,
1: ये दिन रात बनाता है,
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
0: सूरज ये
1: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
2: मौसी एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है, ठीक है?
3: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
2: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
2: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस दस पहेलियाँ। चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।

0: डर जाती
1: और थी। आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
2: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे,
2: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आपने एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुना। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रसिद्ध है लोक संगीत, इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे डॉक्टर राजकुमार जैन के गाए लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने डॉक्टर राजकुमार जैन के गाए लोकगीत सुने। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सौम्या त्रिपाठी की गाई सुगम संगीत रचनाएं।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सौम्य त्रिपाठी की गायी सुगम संगीत रचनाएं सुनी। यह आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हम हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनु

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है, आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। भारत ने ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 MCC C-17 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यिजांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग करने की अपार संभावनाएं हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि एआई नवाचार पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा दलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नशा मुक्त भारत के निर्माण के महत्व पर लिखे एक लेख को साझा करते हुए ये बात कही। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना सही समय पर साझा करने से सरकार को मामलों की प्रभावी निगरानी और आवश्यक परामर्श देने में मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
1: प्रदेश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए छात्र छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संदेश में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस हमें जागरूक करता है कि नशे के दुष्प्रभावों के प्रति सजग करते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दें और स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के संकल्प को साकार करने में अपनी भागीदारी निभाएं।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप

0: आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले मीसा बंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन में प्रदेश भर के करीब 2000 लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों का शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई घोषणाएं भी की।
1: लोकतंत्र सेनानियों को स्पेशल ट्रेन कर देंगे, आप आराम से जहां आपको यात्रा करना है सरकार के माध्यम से आपकी यात्रा कराएंगे। आपने रेस्ट हाउस सर्किट हाउस में 2 दिन निशुल्क रुकने की बात कही, निश्चित रूप से मैं रुकने के लिए व्यवस्था करने की घोषणा करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी, और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहां राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी, ये व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से होगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य जन स्वास्थ्य और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। भोपाल में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को लेकर मुहर्रम पर्व अकीदत और गमी माहौल में मनाया गया। शिया समुदाय ने शहर में मातमी जुलूस निकाला, वहीं सुन्नी समुदाय की ओर से रोजा रखकर घरों में इबादत की गई। नर्मदापुरम में विभिन्न स्थानों से ताजियों और सवारियों का जुलूस निकाला गया। बात मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में इसके भोपाल और उज्जैन संभाग तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्री मानसून और मानसूनी गतिविधियां तेज हो गई हैं। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 45 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। आगरमालवा और सीहोर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य, सिंचाई और ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सीहोर जिले के आष्टा स्थित देवांचल धाम देवबरला बिलपान में प्रदेश का पुरातत्व विभाग जल्द ही रुके हुए विकास कार्यों को दोबारा शुरू करने जा रहा है। शहडोल और झाबुआ जिलों में साइबर ठगी से बचाने के लिए और डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैंकर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित हुई। कटनी के विजय राघवगढ़ वन्य क्षेत्र में 14 वन्य जीव एक साथ मृत पाए गए हैं, जिनमें 12 चीतल और 2 सांभर हैं। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आगरमालवा जिले में कल आयोजित हुए शिविर में पुलिस अधीक्षक ने आमजनों को ऑनलाइन ठगी, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी लिंक और सोशल मीडिया हैकिंग से बचने के प्रभावी उपाय बताए। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने आज आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले वरिष्ठ सेनानियों को सम्मानित किया और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर अर्थात 800 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनबे बारे सवई किसान भैया बहनों से नीति बिन्ना की राम राम। किसान भैया हरो, आज हम जब अपनी चौपाल की तरपाऊँ चले आ रहे थे ना, तो हमने गली के मोड़ पे देखो कि बहुत ही मुतके भैया आ रहे हैं, खूब ही उम्दा से कुर्ता पैजामा पहने चले आ रहे होते। ऐसे हमने सोची कि कौन से पूछें कौन से पूछें, जो लो हमें मिल गए लल्लू कक्का। सो हमने उनसे तुरंत ही पूछ ली कि लल्लू कक्का काए आज रैली सी कहाँ निकल रही। सो वे बोले, हैं तुम्हें नहीं पता का आज मुहर्रम है। अपने मुस्लिम धर्मावलंबी भैया हरे सब मिर्जुर्क हैं, करबला जाऊत हैं और ताजिया निकारत हैं। लल्लू कक्का कहने लगे, जिज्जी मुहर्रम में खुशी से ज्यादा सीख दई जात है। ताजिया निकारवे को मतलब जे ही होत है कि ताजिया करबला की याद को प्रतीक आए। जे लोग श्रद्धा से ताजिया निकारत हैं, ए समय गरीबों की मदद करत हैं, पानी पियाऊत हैं, ठंडो शरबत पियाऊत हैं, चलवे या बेजावे बारों की ऐसी सेवा करत हैं निस्वार्थ भाव से। और भैया ये सब में का दिखत है, उनके भाईचारे की भावना। पर इतने में लल्लू कक्का हमसे कहे कि जे त्यौहार बिन्ना हमारी गंगा जमनी तहजीब की जीती जागती मिसाल पेश करत है। हम सुनत रहे ध्यान से लल्लू कक्का की बात, काय से ई में हमारे मुस्लिम धर्मावलंबी भैया हने और हिंदू भैया हने दो मिर के सेवादारी करत हैं। तो किसान भैया हरों, जब आप और जानत हो कि हमारे देश में कई जाति धर्म के लोग बसत हैं रहत हैं, और जे भी देखने में आत है बात कि वे और सबई जन यानी हम सबई जन एक दूसरे के त्यौहार को हंसी खुशी मनाऊत हैं। आज मुहर्रम को त्यौहार सुई आए तो जे त्यौहार भी हमारी तहजीब को उदाहरण प्रस्तुत करत आए। अब भैया हमें तो जे जानकारी लल्लू कक्का से मिलाई गई, पर आप और जानत हो कि एक दिना हमारे रामलाल कक्का के संगे आए करीम चाचा, तो हमने उनसे सुई मुहर्रम पे मुत की जानकारियाँ जानी और समझनी चाहिए। तो फिर का करीम चाचा ने हमको इतनी मीठी मीठी उम्दा उम्दा बातें बताई भैया, भी कहने लगे कहा समझे, उनने कही देखो हमारे धर्म अलग हो सकत हैं पर त्यौहार मनाने को हमारा तरीका, एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव रखने को तरीका, और मिलजुल के रहने को जे जो

फिर मेल जोल, विश्व बंधुत्व की भावना, और देखो ये सब तो हमारे देश में शुरू ही से रही है, पुरातन काल से चली आ रही है ये भावना। और ये त्यौहार इन बातों को हमारे सामने लेके आते हैं। फिर अपने सियाने पुरखा, बड़े बुजुर्ग, ऋषि मुनि, ज्ञानी बियोरे सुई जे ही बताऊत रहते कि देखो भैया, सबई खो मिलजुल के रहने चाहिए। हमारी उन्नति तरक्की तबई संभव है जब हम औरें मिलजुल के आगे बढ़ें, एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान दें हैं।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज़्ज़ा पार्टी ये। चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: किसान भैया हरो, देखो अबे चल रहो है बस कारो। भले अबे आओ नहीं है, पर कारे गोरे पीरे से बदरा देखे लगा थे कि बस कारो तो आए है। जे विश्वास है हमारो और आपको सुई है ना। अब बस कारो आबे से पहले आप किसान भैया हरों को तैयारी तो कर लेने चाहिए। और आप तैयारी कर सुई रहे हो, अब ये तो आपको भी पता है और हम सुई जाने थे है ना। अब भैया अब कहीं अपने आसपास ऐसी जगह है जहाँ अपन छोटो मोटो तालाब बना सकते हैं? आप भैया हनों के खेत ही में कहूँ परती डरी जगह ऐसी रहत है तो कहूँ पुराने तालाब सुई होते हैं तो उते अपन पानी भर सकते हैं। और भैया पानी रहे तो भी खेती बाड़ी ये काम वक्त जरूरत के समय काम तो आ है। और फिर भैया का होत है कि हमारे धरती में पानी को लेबल अच्छो हो जात है जे पानी भरो रहने से है ना। पर भैया अब पानी तो खेती बाड़ी के काम आ जाए है वो भरो पानी, पर ओमें आप कछु और जतन भी कर सकत हो, कछु और काम भी कर सकत हो। अब आप सोच रहे हुए हैं कि भाई स्पष्ट बताओ जित जी कि और का कर सकत हैं। तो भैया आप ओमें झींगा पालन सुई कर सकत हो। अब देखो झींगा पालन करबे की पूरी विधियाँ तो हमें नहीं पता, पर अपन का कर सकत हैं चौपाल में हम अपने आई हैं माधुरी शर्मा जीत जी, इनसे झींगा पालन की जानकारी सुन लेते हैं अपन।
4: किसान भैया राम राम। हम खेती बाड़ी के साथ साथ अलग अलग प्रकार के उद्यम करना चाहते हैं जैसे कि पशुपालन, मछली पालन, इसी क्रम में एक है झींगा पालन। तो झींगा पालन के बारे में आज जानते हैं डॉक्टर माधुरी शर्मा जी से जो कि प्राध्यापक है मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर से। माधुरी जी सबसे पहले तो इस बातचीत में हम आपका स्वागत करते हैं।
5: धन्यवाद जी।
4: संक्षिप्त रूपरेखा में जानना चाहेंगे कि ये झींगा पालन जो हमारे किसान बहन भाई नहीं जानते उनके लिए ये क्या है?
5: झींगा पालन एक वैज्ञानिक जलीय कृषि तकनीक है जिसमें व्यवहारिक उद्देश्य के लिए झींगों को तालाबों या नियंत्रित वातावरण में पाला या उत्पादित किया जाता है
4: जी।
5: यह खारे और मीठे दोनों प्रकार के पानी में किया जा सकता है। भारत में अभी तक झींगा पालन का कार्य प्राकृतिक रूप से समुद्र के खारे पानी में किया जा रहा था, लेकिन कृषि में हुई तकनीकी विकास और अनुसंधान के चलते झींगा का सफल उत्पादन अब मीठे जल में भी संभव हो गया है। मीठे पानी की अगर प्रजातियों की हम बात करें तो इसमें मैक्रोबेकियम रोजनवर्गी या इसे हम सामान्य रूप से स्कैम्पी नाम से भी जानते हैं सबसे लोकप्रिय और अच्छी प्रजाति मानी जाती है। इसके अतिरिक्त मैक्रोबेकियम मेलकोमोनी एंड मैक्रोबियम इडाई भी मीठे पानी की महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। अच्छा, अब हम झींगा पालन क्यों करें, ये इसका क्या महत्व है, इसके विषय में आपको बताना चाहूंगी। झींगा कम वसा वाले प्रोटीन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। ये विटामिन B12, आयरन, फास्फोरस और विशेष रूप से सिलीनियम से भरपूर होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। और इसके साथ साथ ये ओमेगा-3 फैटी एसिड का भी एक समृद्ध स्रोत है।
4: इसका मतलब इसकी मांग इसके पोषण के कारण बढ़ रही है और इसलिए इस विषय पे हम आज बातचीत कर रहे हैं ताकि हमारे किसान बहन भाई लाभ में आ सकें।
5: निश्चित है
4: जी। एक बात आपने कही थी कि ये समुद्र या खारे पानी में मुख्यतः किया जाता था, तो क्या हमारे मध्य प्रदेश में इसकी संभावनाएं हैं?
5: जी, मध्य प्रदेश में भी इसकी संभावनाएं हैं। मध्य प्रदेश में कुछ जगह जैसे सिवनी के भीमगढ़ डैम में, बालाघाट, शिवपुरी जैसे जिलों के किसान झींगा पालन कर रहे हैं क्योंकि इसकी मांग बढ़ गई है, इसलिए इस तरफ उनका भी रुख आ रहा है। और मध्य प्रदेश में नर्मदापुरम जो जिला है
4: जी।
5: उसके पवारखेड़ा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान का एक सेंटर है, जहां इसको एक प्रदर्शन या डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में भी दिखाया जाता है। मध्य प्रदेश में प्रचुर मात्रा में नदियां, जलाशय और तालाब हैं मीठे पानी के, जो कि झींगा पालन के लिए आदर्श है। और यहां का तापमान सामान्य रूप से अगर हम बात करें तो 24 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, जो कि झींगा की वृद्धि के लिए उपयुक्त माना जाता है। दूसरा, अगर हम जैसे दूसरे मछली पालन से अगर इसको जोड़े तो जैसे रोहू कतला वगैरह अगर हम पालन करते हैं तो उसकी तुलना में अगर बाजार में इसकी कीमत हम देखें तो अधिक होती है।
4: मतलब ये महंगा बिकता है और इसलिए लाभ भी अधिक होगा,
5: अधिक मिल सकता है किसान।
4: तो ये तो पूरी एक रूपरेखा आपने बता दिया जिससे कि हमारे किसान बहन भाई जागरूक होंगे। अब बात करें यदि झींगा पालन के विधियों की, तो विधियां हमें बताएं कि किस प्रकार से इसका पालन किया जा सकता है।
5: झींगा पालन की विधियां, स्थान की उपलब्धता और साधन, उसके हिसाब से अलग अलग विधियों में इसको बांटा गया है। जैसे विस्तृत प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसमें हम कम लागत से उत्पादन शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें उत्पादन हमें कम प्राप्त होता है। दूसरा, अर्ध सघन प्रणाली अगर हम की बात करें तो इसमें झींगे के आहार के लिए, जल के लिए और प्रजनन का हमें प्रबंधन करना पड़ता है। इस विधि द्वारा झींगे का उत्पादन अगर हम करते हैं तो 500 किलो ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक हमें उत्पादन प्राप्त हो सकता है। और भारत की अगर आप बात करते हैं तो सबसे अधिक अगर जो कोई विधि है, प्रचलित विधि है, तो ये अर्ध सघन प्रकार की ही है। इसके अतिरिक्त एक सघन प्रणाली है जिसमें आहार एवं जलीय कारकों का प्रबंधन करते हैं। इस विधि में हमारी लागत उच्च लगती है।
4: अच्छा।
5: क्योंकि इसमें हमें तकनीकी ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता होती है। इस विधि द्वारा उत्पादन हमें अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। अगर आप बात करते हैं तो इसमें हम 5000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक भी हम झींगे को उत्पादन कर सकते हैं।
4: जो अर्ध सघन प्रणाली है उससे 10 गुना लाभ बढ़ सकता है,
5: निश्चित ही
4: जी।
5: बस हमें तकनीकी कौशल की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त एक और विधि है समेकित प्रणाली, जिसमें हम क्या करते हैं, झींगा को मछली और धान के साथ भी पालन करते हैं। इस विधि में हमारी लागत तो कम लगती है, लेकिन हम संसाधनों का बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं जिससे हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें झींगा को हम दूसरी मछलियां जैसे हमारी कतला है, रोहू है, इन मछलियों की प्रजातियों के साथ पाल सकते हैं। कॉमन कार्प, ग्रास कार्प, मृगल आदि मछली की प्रजातियों को झींगा के साथ तालाब में संचित नहीं करना चाहिए, लेकिन कतला के स्थान पर अगर सिल्वर कार्प डालना चाहते हैं झींगा पालन में तो वो जरूर आप कर सकते हैं।
4: इसका कारण क्या है कि इन मछलियों को उसके साथ नहीं रख सकते
5: हैं? क्योंकि इनकी जो आहार की विधि है वो एक सी होती है, तो इस वजह से उन मछलियों की जगह पे झींगा स्थान लेता है। इसीलिए हम झींगा के साथ वो मछलियों की प्रजातियों को नहीं रखते।
4: तो जिस तरह से मछली पालन के लिए हम तालाब बनाते हैं, क्या झींगा पालन के लिए भी उस तरह से होता है या अलग से बनाना पड़ता है?
5: तालाब के निर्माण के लिए हम क्ले, सिल्ट, दोमट मिट्टी वाली जगह चयन करते हैं जिससे पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है। तालाब बनाने के लिए हम छोटे और बड़े दोनों तरीके के जलाशय का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य रूप से इसके लिए हम आधे हेक्टेयर से 1.5 हेक्टेयर तक के तालाब बना सकते हैं, जिनकी गहराई 0.75 मीटर से लेकर अधिकतम गहराई 1.2 मीटर तक भी हो सकती है। तालाब की दीवारों को ढालदार ना बनाकर हमें इसमें सीधी खड़ी रखना चाहिए। पानी भरने तथा वर्षा का अतिरिक्त जल निकालने के लिए उत्तम प्रबंधन इसमें हमें अवश्य ही कर लेना चाहिए। अगर इस तरीके के तालाब में पौधे होते हैं तो अच्छे हैं, क्योंकि हमारे झींगों को दिन के समय तालाब के किनारे छुपकर आराम करने की आदत होती है। दूसरा, इसके लिए नर्सरी हमें तैयार करना होता है, तो इसके लिए हम 1 एकड़ जल क्षेत्र पालन अगर हमें करना है तो उसके लिए हम 0.04 एकड़ जल क्षेत्र में नर्सरी तैयार करते हैं। इसके लिए हम तालाब के पानी को पहले निकाल के उसको पूर्ण रूप से सुखा लेते हैं, जब तक कि वो जो मिट्टी है उसमें दरार ना पड़ जाए तब तक हम उसको सुखाते हैं। इसका लाभ क्या होता है कि जो उसमें जीवाणु हैं, कीटाणु हैं या परजीवी हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम तालाब में 1 मीटर की गहराई तक पानी भर लेते हैं और उसको बाद में हम चूना, खाद और उर्वरक का उपयोग करना पड़ता है, जिससे हमारा जल जो है उत्पादन क्षमता उसकी बढ़ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, चूना 20 किलोग्राम डालते हैं, 4 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 2 किलोग्राम यूरिया का उपयोग इस जल राशि में हम करते हैं।
4: जी माधुरी जी, अब तो तालाब की तैयारी के बाद हम जो झींगे के बीज होते हैं इनका संचयन कैसे करेंगे?
5: 1 एकड़ जल क्षेत्र में हम 20,000 बीज जो है इस जल क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा ये है कि जब हम बीज कहीं बाहर से लेके आते हैं और तालाब में डालते हैं तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, क्योंकि पैकेट में होते हैं, पैकेट का जो तापमान है और जलाशय के जल का तापमान उसको एक करना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम एकदम से अगर पूरे सीड को या बीज को डाल देंगे जलाशय में तो मृत्यु होने की संभावना हो जाती है। इसलिए दोनों का तापमान बनाए रखना बहुत ही जरूरी होता है। नर्सरी में बीज डालने के बाद में लार्वा जो आ जाते हैं हमारे, उनको हम 45 दिन तक रख सकते हैं। रखने के बाद ये शिशु झींगा के रूप में बदल जाते हैं जी। इतने दिनों के बाद ये लगभग 3 ग्राम तक वजन ये ले लेते हैं 45 दिनों में। तो इन शिशु झींगा जो हमारे हैं हमारे पास में, अब इनको ये भी है कि वहाँ कोई दूसरे जलीय जीव जंतुओं से हमें इनकी रक्षा करनी हो, मतलब कोई दूसरे इनके दुश्मन ना हो, तो उसके हम क्या करते हैं अपने तालाब या नर्सरी के चारों तरफ जाल लगा देते हैं जिससे कि वो इनको नुकसान ना करें। इसके साथ साथ अब नर्सरी से हमें बीजों को तालाब में शिफ्ट करना है, हस्तांतरित करना है, तो हम इसके लिए 3 से 4 ग्राम के जो हमारे झींगे हैं उनको हम तालाब में हस्तांतरित कर देते हैं।
4: अब जब तालाब में हम इन झींगों को डालेंगे मैडम, तो तालाब के पानी की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए?
5: इसकी अवस्थाएं जो हैं जीवन की अलग अलग होती हैं, लार्वा है वयस्क के लिए अलग होती हैं। जैसे अगर हम प्रजनक की बात करें तो इनके लिए आदर्श तापमान 29 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस होता है
4: जी,
5: लेकिन ये 18 से 34 डिग्री सेल्सियस पे भी वृद्धि कर सकते हैं। पीएच मान की अगर जल के पीएच मान की बात हम करें तो 7.2 से 8.5 होना चाहिए। ये हल्का क्षारीय जल होता है जो कि इनके वृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है
4: जी।
5: और अगर पीएच हमें ऐसा लगता है कि कम है तो उसके लिए हम चूने का उपयोग कर सकते हैं
4: जी।
5: और इनकी जो लार्वा अवस्था है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लवणता, तो इनके लिए 10 से 14 जो पीपीटी है वो लवणता वाले जल की आवश्यकता होती है
4: जी।
5: तो अगर ये नहीं होगा तो हमारे लार्वा का बचना मुश्किल हो जाता है
4: जी। अब बात करें यदि झींगा पालन में आहार की, तो पोषण के लिए क्या प्रबंधन होना चाहिए?
5: झींगा जो है सर्वभक्षी स्वभाव का जीव है और ये जंतु और वनस्पति दोनों का भक्षण करता है
4: जी।
5: झींगा दिन में छिपे रहते हैं और रात्रि के समय भोजन के लिए सक्रिय होते हैं तालाब में। अब अगर हम व्यावसायिक रूप से पालन करना चाहते हैं तो सिर्फ तालाब में जो भोजन है उस पर हम निर्भर नहीं रख सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का भोजन झींगों को देना पड़ता है। इसमें हम क्या करते हैं 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी भोजन अगर देते हैं तो निश्चित ही इस पालन में हमको अच्छा लाभ होता है
4: जी।
5: हम भोजन में 4% सरसों की खली, 4% राइस ब्रान और 2% फिश मील देते हैं। मांसाहार के रूप में अगर आप बात करें तो मछलियों का चूरा, घोंघे, छोटे झींगे या जो बुचड़ खाने का अगर कोई अवशेष है तो उसको भी हम यहाँ पे मांसाहार आहार के रूप में दे सकते हैं
4: जी। जी जी, तो ये मात्रा कितनी होनी चाहिए आहार की?
5: सामान्यतः झींगा के बीज के वजन का 10% तक आहार हमें प्रतिदिन उनको देना चाहिए
4: जी।
5: तालाब में शुद्ध रूप से झींगा पालन के लिए 2 माह तक 2 से 3 किलोग्राम पूरक आहार की प्रति एकड़ की दर से निश्चित ही हमें आवश्यकता होती है जो कि देना चाहिए। इसके बाद 4 से 6 माह तक हम 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से पूरक आहार दे सकते हैं। आहार के अतिरिक्त अगर एग्रीमीन 1% टेरामाइसिन पाउडर 40 ग्राम अगर हम देते हैं तो निश्चित ही हमारे झींगे की वृद्धि के लिए अच्छा काम करते हैं। आहार देने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आहार को चौड़े मुंह वाले पात्रों में भरकर तालाब में अलग अलग जगह किनारों पे कई जगह पे हम इनको कई स्थानों पे रख सकते हैं।
4: तो माधुरी जी, आपने ये झींगा पालन की एक नई राह दिखाई है। हमें आशा है कि हमारे क्षेत्र के किसान बहन भाई भी अच्छा लाभ इसमें कमा सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद
3: भैया। अबे अपन डॉक्टर माधुरी शर्मा जी और अपने विपिन भैया की बतकाओ जो थी झींगा पालन की जानकारी जे सुन रहे हते। अब देखो भैया, चलत चलत कभू कोनो जान चिन्हार को हमें मिल ही जात है तो को राम राम तो हम और कर ही लेते हैं, है ना। अब हमें एक दिन मिल गए हल्ले कक्का, कहन लगी काय जिज्जी कितने चली जा रही, हमने कही चौपाल जाने हैं, चर्चा करने हैं कक्का। तो कहन लगे काहे की चर्चा करने हैं आज ये तो बताओ। हमने कही कक्का आज है विश्व नशा निरोधक दिवस, तो जे पे सब ऐसे हम मोरे चर्चा कर रहे हैं। बे कहन लगे तुम कितई चर्चा कर लो जिज्जी, कछू कर लो, बे कहूँ सुन है का तुम्हारी बात, नशा करवे बारे का नशा करनो अपनो छोड़ है का। हमने कही कक्का ऐसी बात ना कहो, अब जो नशे के शिकार हैं वे तो अब ओके आदि हो ही गए हैं, वे खुद ही नुकसान उठा रहे, कई तरह की बीमारियां पाल के बैठे, अभी जिन्हें पर शुरू नहीं करो है नशा, हम उनको चेतावनी देते हैं कि भैया देखो ऐसो करने से आप अपने शरीर ही को नुकसान कर रहे हो, पैसा बर्बाद होत है सो अलग। आप औरें जिते रहत हो उते से अपनो मान सम्मान खो बैठत हो सो अलग। कौनो हमें अच्छी दृष्टि से फिर देखते का? अब आप ही बताओ किसान भैया, आरो देखेगा कोई? अब जो जोन रास्ता से निकले, अरे तो उत से तो बातें बननी ही हैं। तो फिर भैया नशा कर बे वालों की तो जिंदगी फिर अब कहाँ बोले? तो कक्का से तो हमने जे बतकाऊ करा ही रहे थे। और किसान भैया अब आप सुन ही रहे हो कि कितनी बुरी हालत हो जाते हैं उन औरों की। अब हम औरें जे चाहत हैं कि जो नशा के आदि हो गए हैं, अबे भी देखो कछु बिगड़ो नहीं है, अबे भी वे अपनी असल जिंदगी में वापस आ सकत हैं, पर ओके लाने उनको जरूरत है आत्मबल की, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़न की। अब जे चक्करन में तो फंस गए है ना, पर आत्मशक्ति और बल से नव जीवन को निर्माण कर सकत हो, आगे बढ़ सकत हो। बस परिवार संगे रहो, दूध पियो, फल खाओ, नशा से दूरी बनाओ।
1: कही मानो मोर सैया, छोड़ दो नशा अब।

अब देखो भैया, हमने तो लोकगीत के माध्यम से सुई, आप औरों को संदेश दो कि नशा अपने जीवन से बिल्कुल ऐसे दूर कर दो। भैया नशा से मुक्त हो बे के लाने, योग से अच्छो कछु नहीं है, बस रोज अनुलोम विलोम तो करना ही है हमें, और अनुलोम विलोम से सरल तो कछु नहीं, प्राणायाम और ध्यान सुई करो। खेतन में जानी खुले वातावरण में जरूर जाओ, प्रकृति के बीच कछु समय तो बिताओ, फिर देखो भैया कैसे जीवन में ना बदलाव आए हैं। नशा जीवन को कमजोर बनाऊ है, जबकि योग शरीर मन और आत्मविश्वास को मजबूत बनाऊ है।

भैया, मजबूत इरादों के पंख लेके बस निकल पड़ो। जो तुम्हें रोकबे को दुस्साहस करे उसे लड़ो। पांव की बेड़ियों को तोड़ दो, डर को पीछे छोड़ दो। जे सुई तुम्हारे बस में है कि हवाओं को रुख मोड़ दो। लोगों के सवालों से यूं ना घबराओ। जीतना चाहते हो तुम औरें तो बस चलते चले जाओ। जो आज नहीं भाओ, जो आज नहीं भाओ कल हो जाए। आज किसी और को दिन हतो, कल तुम्हाओ जरूर आए। माना मुश्किल है, माना मुश्किल है भैया, पर थोड़ा सब्र करो। माना मुश्किल है पर थोड़ा सब्र करो। और जे हौसलों की उड़ान है भैया, जे हौसलों की उड़ान है भैया, दूर तक भरो। देखो भैया, जे संदेश देना हमारे कार्यक्रम को उद्देश्य होत है कि जीवन में भले कितनी भी नकारात्मकताएं भरी रहें, पर हमें अपने सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़त चलने हैं और मिलजुल खें ई देश की तरक्की उन्नति के लाने सोचते विचार करते रहने हैं। तो भैया, आज जय संदेश के साथ सवई भैया भौजी, जिज्जी बिन्ना हरोंखों नीति बिन्ना की, राम राम, जय जवान जय किसान।

अभी आपने कृषि जगत कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: 2026 में भारत की अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज गुरुग्राम में संपन्न हुई। वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और अवसरों पर और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर हुई चर्चा के बाद ब्रिक्स देशों के सामूहिक दृष्टिकोण और सहमति को दर्शाते हुए एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई। इस घटनाक्रम के महत्व, इसकी बारीकियों और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
3: धन्यवाद सोनू जी।
2: अतुल जी, जो ये 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, इसके महत्व को सर्वप्रथम आप बताएं कि कैसे आते हैं, खासकर जो वर्तमान ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम है, जिस तरह के उसमें चैलेंजेस हैं, उसको देखते हुए ये जो सहयोग ब्रिक्स देशों के बीच उभर के आ रहा है, इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है?
3: सोनू जी, अगर आप देखें किसी संदर्भ में ये बैठक हुई है, और संदर्भ अगर हम देखें तो जो ईरान के ऊपर जो युद्ध चला इतने दिनों का, अब लगता है कि समाप्ति की ओर है, उसने एक चीज दर्शाई कि हमारी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर बहुत वल्नरेबिलिटी है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर खासकर बहुत वल्नरेबिलिटी है, और गल्फ देशों से। तो भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो इम्पोर्ट कंटेंट है बहुत हाई है, 80% के प्रतिशत हम बाहर से लेते हैं। इसलिए हमें एनर्जी के ऊपर सेल्फ सफिशियंट होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास तेल के उतने भंडार नहीं है, गैस के भंडार उतने नहीं है, इसलिए हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स पे जाने की जरूरत है ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो देश मिलके ये काम सोच रहे हैं या ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं वो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, यानी कि ये पश्चिमी देश नहीं है, ये उभरते हुए देश है, जिसमें भारत है, चीन है, रूस है, ब्राजील है, और 11 देश आपने जैसे कहा था, यूएई आ गया, ईरान भी उसमें आ गया। तो ये जो कॉन्क्लेव बना है ये उभरते हुए देशों का है, तो एक नई दुनिया की तरफ हम जा रहे हैं, जो पोस्ट वेस्ट वर्ल्ड जो कहते हैं उसके ऊपर हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। और तीसरी इसमें एक बात जो जुड़ी हुई है वो है कि आफ्टर ऑल दो चीजों पे एम्फेसिस किया गया, एक तो अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज इस तरह से सो कॉल्ड रिच देश नहीं है, इसलिए अफोर्डेबिलिटी बहुत जरूरी है। और फाइनली जो बात जा रही है कि जो डेवलप होगी टेक्नोलॉजीज, रिन्यूएबल या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, जो एनर्जी टेक्नोलॉजीज होगी, उसको हमें शेयर करना है किसके साथ? ग्लोबल साउथ के साथ। तो एक ग्लोबल साउथ का एलिमेंट भी ब्रिक्स के साथ जुड़ जाता है। तो मुझे लगता है ये एक तो कॉन्टेक्स्ट हो गया और उसका जो एक तरह से डायरेक्शन है वो भी बहुत क्लियर हो गया इस बैठक के बाद।
2: बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भारत के स्वच्छ ऊर्जा बदलाव और भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा रोडमैप पर प्रकाश डाला। उन्होंने सर्वेषां ऊर्जम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
4: गाइडेड बाय द विजन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड द ब्रिक्स चेयरशिप थीम बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन cooperation and sustainability, India seeks to strengthen BRICS cooperation towards building energy systems that are resilient, future ready, technologically advanced, environmentally sustainable and people centric. India's own energy journey reflects this approach. Following the principle of sarvesham urjam, that is energy for all, our vision extends beyond meeting today's energy needs. India seeks to build a future-ready energy system that is digital, centralized, and consumer-centric. Clean power, smart grids, energy storage, and emerging fuels will work together to create a more reliable and sustainable energy ecosystem. This will support economic growth and improve the lives of over 1.4 billion people. Today, India is the world's third largest producer and consumer of electricity.
2: जिस तरह से खट्टर जी ने बताया कि आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति के मुख्य आधार के रूप में किफायती, भरोसेमंद और टिकाऊ ऊर्जा बहुत ही जरूरी है, और हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर कंज्यूमर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और उन्होंने जो हमारा रैपिड क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन है, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, बायो एनर्जी हो, उसमें जो हमारा लीडरशिप रोल है उस पर भी बल दिया। सो आपको लगता है कि

0: भारत ग्लोबल एनर्जी इकोसिस्टम में एक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है?
1: सोनू जी, देखिए कि एक दिशा मिली है, डॉक्ट्रिन मिला है, एनर्जी फॉर ऑल। छोटा सा 3 वर्ड्स का है, लेकिन इसमें बहुत कुछ कहा जाता है कि एनर्जी फॉर ऑल मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं देख रहे हैं, पूरे विश्व के लिए देख रहे हैं। और अगर अब इससे जोड़े पहले वाला स्लोगन जो है, जो सोलर एनर्जी के ऊपर बात हुई थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो वो भी पूरे विश्व को देखते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव में बात हुई थी। तो इसलिए जो दिशा जो आप कह रहे हैं वो लीडरशिप का है या नेतृत्व का है, लेकिन मंशा जो है वो ग्लोबल है। और खास करके जो आपने बात की, इसमें ग्लोबल साउथ हमारा फोकस रहा है, चाहे वो G20 की हमारी मीटिंग हुई है, उसके बाद की कोई मल्टीलैटरल्स हुई है, तो हमने ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, बल्कि केंद्र बिंदु बनाया है हमारी सोच की दिशा का। तो एक तरह से ये दोनों चीजें अभी बैठक हुई है उसमें भी दर्शाई जा रही है। साथ में फिर इसको करना कैसे है, इसके रोड मैप्स क्या हो सकते हैं, जो पावर मिनिस्टर ने कहा है उसमें वो चीजें भी आती हैं कि आपको स्मार्ट ग्रिड्स कैसे बनानी है, मतलब डिजिटली कंट्रोल ग्रिड्स जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करें, जैसे जैसे पावर डाउन जाती है अप जाती है, उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल उसका होता है डिजिटली, तो वो स्मार्ट ग्रिड होती है। स्मार्ट ग्रिड की बहुत जरूरत है अगर आप शेयर करना चाहें एनर्जी। और सबसे बड़ी बात ये होती है, खास करके ये रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात करें, तो स्टोरेज की, कि भाई सन चला गया विंड चली, उसके बाद स्टोर कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। और उसके ऊपर भी इस बार जो है एक संस्था बनाई है जिसपे आप स्मार्ट ग्रिड्स और स्टोरेज के ऊपर खास करके रिसर्च होगी। तो ये भी सिर्फ बात सोच की नहीं है, लेकिन कैसे करना है इसको, इस बड़े प्रयास को, क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं है, ये नए प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं। अब इसमें एक और चीज आएगी, तो लोग चाहिए, नए स्किल्ड मैन पावर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, सबको इसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। उसके लिए भी संस्था बनाई गई है इस बार कि जहां पर ये ट्रेनिंग भी दी जाए। तो सिर्फ बात ही नहीं हो रही, बट जिसको कहते हैं ना वॉक द टॉक, वो भी साथ साथ हो रहा है कि भी करना तो है, कैसे करना है वो भी, कैसे हम लक्ष्य में पहुंचेंगे, और जो गोल है वो ग्लोबल है।
0: बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि ये ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म जिसकी बात हुई है, जिसके अंतर्गत स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण की बात हुई है, और जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें ब्रिक्स देशों के बीच जो अनुसंधान तकनीकी सहयोग और नॉलेज शेयरिंग होगी, आपको लगता है कि ये सारे इन देशों के एनर्जी सिक्योरिटी को और एनर्जी स्टेबिलिटी को मजबूत करने में सहायक होगा?
1: बिल्कुल, क्योंकि बात सुनो ये हो रही है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की। जब तक इंस्टीट्यूशंस नहीं बनेगी, संस्थान नहीं बनेगी, तब तक आप जो है एश्योर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहले से एक बनी हुई है ये संस्था, ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च कॉर्पोरेशन प्लेटफॉर्म, ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये वर्चुअल है सिर्फ, इसमें कोई फिजिकल हेडक्वार्टर्स नहीं है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के संदर्भ में रिसर्च और उसके रिकमेंडेशंस वगैरह वगैरह सारे जो देश हैं ब्रिक्स के, इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आप स्टडीज जिसपे करनी है वो एलोकेट की जाती है, ये जो मंत्रालय हैं ये इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और डाउनस्ट्रीम होके स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च वर्क करती है। एक तो ये ERCP एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ एक तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, क्योंकि बात फिर आती है स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज की, उसके भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस आधार पे हम काम करेंगे, क्योंकि बहुत से देशों की अपनी रेगुलेशंस होती है, इसको एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आता है। तो वो भी इस बार बात हुई है, यहाँ पर ये गाइडिंग प्रिंसिपल भी अडॉप्ट किए गए हैं। तीसरी बात है कि इसके ऊपर जो रिसर्च है स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए, एक सेपरेट एक संस्था बनी है जो इसके ऊपर डिटेल में फोकस से और विस्तार से इसके ऊपर रिसर्च करेगी।
0: एक और बड़ा रोचक केंद्र बिंदु निकल के आया है कि भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में युवा भागीदारी की भूमिका को बहुत बल दिया है, और ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन के आयोजन का समर्थन किया ऊर्जा मंत्रियों ने, ये आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है?
1: देखिए, सोच नई है और सोच फ्यूचरिस्टिक है, डिजिटल है, न्यू इकोनॉमी की है, तो इसमें यूथ की भागीदारी तो बहुत जरूरी है, उसके बिना ये होगा नहीं काम। तो एक तरह से एक नया साइकिल शुरू हुआ है फ्यूचर एनर्जी का, जिसमें यूथ की भूमिका जो होगी मेरे को लगता है वो सेंट्रल रहेगी, जैसे आपने कहा, उससे साथ में क्योंकि रिसर्च का एलिमेंट भी आ जाता है, R&D का एलिमेंट आता है, इसमें स्टार्टअप्स वगैरह की भूमिका आएगी, यूथ का इंटीग्रेशन इसमें जरूरी है क्योंकि उसके बिना होगा नहीं काम। तो एक सेंट्रल फोकस रहेगा यूथ को इंटीग्रेट करने के लिए और ट्रेन करने के लिए, हमारी जो जेंजी जनरेशन है उसको खासकर इसमें शामिल होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अहम और बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और साथ में अगर हम देखा जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फाइनली हमको यूथ के लिए क्रिएट करनी है, तो उसके लिए क्रिएट करने के लिए पुरानी तरीके से नौकरियां मिलने वाली नहीं है, अब आपको खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इंटीग्रेट करना, इस यूथ को स्किल्ड करना इन नई टेक्नोलॉजीज में।

0: बहुत जरूरी है हमारे फ्यूचर के लिए।
1: अतुल जी, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों ने राष्ट्रीय परिस्थितियों, विकास प्राथमिकताओं और ऊर्जा प्रवाह को सम्मान देने के महत्व को भी दोहराया। इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, खासकर विकासशील देशों के लिए जिनके लिए एनर्जी ट्रांजिशन जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ इस स्टेज में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, क्योंकि आप इस वक्त क्लाइमेट फंडामेंटलिस्ट नहीं बन सकते कि सिर्फ रिन्यूएबल ही करेंगे। भारत में ये देखिए, कोयले के कितने बड़े भंडार है, आप उसको छोड़ तो नहीं सकते। आप क्लीन कोल की तरफ जा सकते हैं कि वो पोल्यूटिंग ना हो, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो जरूरी है। जो गैस है, अगर आप भारत में देखें तो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में इन्वॉल्व है या ऑटो रिक्शाज वगैरह है, सब सीएनजी पे चलते हैं। तो आपको एक अच्छा मिक्स की जरूरत है और बायोफ्यूल्स की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस है बिटवीन फॉसिल फ्यूल्स या क्लीन फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल्स के ऊपर बहुत अच्छा बैलेंस इस बैठक में देखने को मिला है, क्योंकि बात क्लाइमेट चेंज की भी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की भी हो रही है। इसलिए वो कॉम्बिनेशन जो एक तरह से एक मॉडल बनाने की जरूरत है, वो शायद भारत दिखा सकता है बाकी विकासशील देशों के लिए। और फाइनली बात यह है कि विकासशील देश जब जुड़ जाते हैं तो स्केलेबिलिटी और भी मिलती है, आपकी जो
1: जी
0: अफोर्डेबिलिटी, उसकी जो
1: जी
0: कॉस्ट है वो कम हो जाती है। तो
1: जी
0: इसलिए विकासशील देशों का उसमें जुड़ना बहुत जरूरी है, और भारत की सोच में ये बहुत ही क्लियर है कि शेयर करना है, और शेयर करना सिर्फ ये नहीं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर होगा, लेकिन इट मेक्स इकोनॉमिक सेंस कि फाइनली अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करनी है दुनिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन को, तब ये जुड़ना बहुत जरूरी है और शेयर करना बहुत जरूरी है।
1: जी बिल्कुल, जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने शुरू किया और जो उसमें प्रगति हुई है उसके बारे में भी उन्होंने बात करी कि 2014 में सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट थी, उससे बढ़कर आज वो 154 गीगावाट से अधिक हो गई है, और छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में तेजी लाने और नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लाई है, आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल्स ये बाकी देश भी अडॉप्ट कर सकते हैं और हम भी दूसरे देशों से सीख सकते हैं?
0: बिल्कुल, और जैसे आपने बात की सोलर अलायंस की, देखिए अब उससे क्या हुआ है कि 2014 से पहले तो स्केल आप देखिए 3 गीगावाट से फाइनल फिगर आपकी कितने गुना बढ़ चुकी है,
1: जी
0: 3 से 150, मतलब इट्स ए रेवोल्यूशन, एनर्जी रेवोल्यूशन है इसको कहते हैं। इससे एक्सपीरियंस आपका गेन हुआ है, अब इसको आप शेयर कर सकते हो क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर सन के साथ किया है तो शायद और तरीके से भी हम कर सकते हैं, बाकी जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उसमें भी हो सकता है। इसमें जब आपने शुरू में बात की लीडरशिप की, एक नेचुरल लीडरशिप आती है क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया आपके पास, और इसकी एप्लीकेबिलिटी बाकी कंट्रीज के लिए बिल्कुल है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस रहा है, और अब हम आगे इसको दूसरे जो सोर्सेज आ रहे हैं जैसे हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसमें आप अलग फिर कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, उसके ऊपर भी रिसर्च बहुत जरूरत है। तो नाउ यू कैन पुट योर फुट फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है भारत ने जैसे डीपीआई किया है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे देशों में आपको ये मिल जाता है डीपीआई, जो हमारा पेमेंट सिस्टम है। उसी तरह से एनर्जी के ऊपर भी हमारा भी एक सारा है, और मॉडल वही है, शेयर करना है और ग्लोबल साउथ के साथ शेयर करना है, क्योंकि भारत में स्केल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इतना हो जाता है फिर आसान हो जाता है हमारे लिए वो शेयर करना। तो मुझे लगता है कि ये एनर्जी के ऊपर भी, रिन्यूएबल एनर्जी हो या न्यू एनर्जी हो, तो हम नेचुरल लीडर एक तरह से बन रहे हैं। ये नहीं कि हमारी मंशा लीडरशिप के अपने आप को ज्यादा जबरदस्ती आगे करने की, लेकिन वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप शेयर कर सकते हो, आप लीड कर सकते हो। ये एक बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप्स लिए गए हैं एनर्जी के फील्ड के ऊपर।
1: जैसा आपने कहा कि धरातल पर हमने निर्धारित समय से पहले 20% एथेनॉल मिश्रण हासिल किया, बहुत सारे जो हमारे गोल्स थे उनको हमने समय से पहले क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए या क्लाइमेट फ्रेंडली जो स्टेप्स थे उनको हमने हासिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद समझिए।
2: अभी आप सुन रहे थे 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक, ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत 1942 ए लव स्टोरी फिल्म से, जिसे गाया है कुमार सानू ने।

अभी आपने आग गले लग जा फिल्म का यह गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के स्वर में आए दिन बहार के फिल्म का ये गीत।

इसी गीत के साथ संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। समाचार संध्या अब हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात

0: के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों

0: परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Centre to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximise benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran

अभी आपने सपने फिल्म का ये गीत हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन के स्वर में सुना। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाज़ में सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत।

इसी गीत के साथ संपन्न होता है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग रामकली में ख्याल, तबले पर संगत की नाना मुले ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग रामकली में ख्याल सुना। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम का पहला गीत चोरी चोरी फिल्म से मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज़ में हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनने हमें खत लिख भेजा है ग्राम सर्रई से, तहसील केवलारी से कमला प्रसाद शर्मा और साथियों ने, बिलहरी बड़खेरा कटनी से माँ लक्ष्मी ठाकुर, संतोष, शारदा, सपना, सत्यम, शिवम, सौरभ, अनु, अबू और आलोक ने, गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा, पारस, तपस्या और करिश्मा ने, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा, कासिम अली, नदीम और जुनैद अब्बासी ने, नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहां नाज, तलअत जहां फरज जहां, रिफ़त, नुजहत, साजिया और नाजिया ने, शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, राधिका और दीपिका ने, लक्कड़ बाजार खंडवा से ठाकुर भवानी सिंह, रोहन, रिया, रणवीर और संजय ने, प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा, संदीप, पिंटू, यथार्थ और जयश्री खंडाले ने, पिंडरई जिला मंडला मध्य प्रदेश से सुमित कुमार जैन, मीना, वरुण और कबीर ने, बेड़ी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री, ढोमने, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज और कविता ने,

कार्यक्रम का अगला गीत दयावान फिल्म से पंकजदास और अनुराधा पौडवाल के स्वर में सुनिए, हमें फरमाइश लिख भेजी है। कोटवा, नारायणपुर, बाबा बट्टी, बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय ने। दुबिहा, निवादा, गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय ने। शेरपुर कलां, गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति और नवनीत राय ने। घंटाघर चौक, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति ने। कंवर कॉलोनी, बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य शिवानी।

और मीनू राज ने, दतरेंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा और गुलाब दास ने, पुणे से पंकज कुमार आर्या, जरूर वरुड़ से बाबा साहेब और चंद्रप्रभा वाड़ोदे ने, आदर्श नगर मलौट से राज शर्मा, मीना, योगेश मैंडी, सौरव, शाइना और निवान ने, सदर जबलपुर से लखन राही, लक्ष्मी, अंकिता और सृष्टि ने, राजपुर से घीसु, लक्ष्मी, माधुरी, सोनाली, भगवान, पुष्पा, नेहा, एकता, अस्मिता, सौरव और कुणाल ने, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश भट्टा, नीलम भट्टा, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश भट्टा ने, जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ बस स्टैंड बंडा भिलई से लक्ष्मण रैकवार, विनीता, वैशाली, वैष्णवी, दीपेश, लल्लू, हल्ले, ऋषि ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर दयावान फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी जबलपुर से अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन, और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में, गीतकार शैलेंद्र सुरों में ढाला, शंकर जयकिशन ने, पत्र लिखा आप सबने। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, सालिया, रऊफ शाहिद और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने, कुंद्रानगर खरगोन से ध्रुवास, सुनीता, खुशी, प्रियांश, आशीष, पूनम, कृष्णा और शुभम ने, मालीपुरा खंडवा से यथार्थ कुमार, सुभाष खंडाले, मंदा, राजेश, अंजलि, संदीप, पिंटू और जयश्री खंडाले ने, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप, राशि और श्रीमती शीतल ने, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गौंडकर, श्रीमती सरिता और प्रिंस ने, आकाश हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, श्वेता और कुमारी ध्वनि गौंडकर ने, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर, जितेक और मीका बिरक ने, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और मेहराज जहां ने, छत्तीसगढ़ बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा, हेमलता, कमलकांत और वीरेंद्र व्रजकांत सारथी ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लव इन टोक्यो फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसे सुनना चाहा है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन, वसीम आरिज शमीम ममता रानी, बेगम इशरत रुबीना नदीम अमन और पूनम कुमारी ने, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और बेगम निकहत परवीन ने, नूर महल महसौल से ही हुमेरा नाज सुमेरा अबीहा अरहान हमजा और मुजम्मिल बाबू ने, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा ने, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा संगीता भावना और प्राची नेमा ने, यंग रेडियो लिसनर्स जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन महेंद्र जैन और सत्येंद्र ने, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनचे राहुल कुमार विशाल शीला और गायत्री धनचे ने, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद रानी महिमा और नीतू वैद्य ने, बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र सुभाष दिगंबर राजेश शिवम और शुभांग और सृष्टि ने, नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा मीना राणा मोनिका नुपुर ऋषिका और रॉबिन ने। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लव इन टोक्यो फिल्म का ये गीत।

अभी आपने फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन सुना। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। हिंदी में समाचार अब हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करते हैं।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त

भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये माइक वन आ रहा है।
1: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड अबलार्दो
0: अबेलार्डो
1: दे
0: डेला
1: ला एस्प्रियेला ऑन हिज विक्ट्री इन द कोलंबियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। In a social media message, Mr. Modi conveyed his best wishes to Mr. De La Espriella for a successful tenure.
0: फेल।

खुदा का नाम लेकर करते हैं, उस ईश्वर का नाम लेकर करते हैं जिसने इस सृष्टि की रचना की, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। हर काम हम उनके नाम से करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन्हीं से कि हमारा दिन अच्छा हो, हमारी जिंदगी अच्छी हो और हमारी हर सुबह खूबसूरत हो। तो आइए हम भी आज की सुबह का आगाज करते हैं ऐसे ही एक बेहद खूबसूरत प्रार्थना।